आदाब सामईन, ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर सुनने वाले सभी सामईन को आज की इस मजलिस में हम खैर मकदम करते हैं। आज बुधवार है, शक्सुमत 1948 के वैशाख महीने की 30 तारीख यानी 1447 हिजरी के जिलहज की 3 तारीख मुताबिक 20 मई सन 2026 ईस्वी।

6:33 हुए हैं। हमारी आज की मामूल की नशरियात का आगाज होता है। मैं हूं आपका मेजबान आमिर अशरफ।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति।

0: भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-प्रति20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत

ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: scoring match in Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
1: सात बजकर दस मिनट हुए हैं। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाप्त कीजिए बराह रास्त प्रोग्राम पयामे सुबह। उससे पहले एक तिजारती वक्फा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है। नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होती है। आज भी हम आपके लिए मुख्तलिफ सौगात लेकर आए हैं। इन सब से महजूज होने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम पयाम सुबह।
1: जी सादत साहब, सुबह की पहली किरण जब उफ़ की मशरक़ से फूटती है तो फितरत के साथ साथ इंसानी दिलो दिमाग को भी नई ज़िंदगी और ताजगी बख्शती है। इसी ताजगी, उम्मीद और रोशन ख्याली का इम्तिजाज है आपकी सुबह का बेहतरीन और वफ़ादार साथी पयाम सुबह प्रोग्राम। समझिए, महज एक नशरियाती प्रोग्राम नहीं बल्कि एक फ़िक्री और तरबियती सफ़र है। जैसे एक हमदर्द उस्ताद अपने तालिब इल्म को इल्म व हिकमत की राह दिखाता है, बिल्कुल उसी तरह पयाम सुबह रोज नरम मगर पुर असर अंदाज में आपके कानों में दाखिल होता है, जहन को रोशन करता है और दिन भर की जद्दोजहद के लिए नई कुव्वत अता करता है। इस प्रोग्राम में ताज़ा तरीन खबरें, मौसम व ट्रैफिक की दुरुस्त मालूमात, सेहत के साइंसी उसूल, तालीमी व मुआशरती तजिए, हौसला अफजा अकवाल और दिलचस्प कहानियाँ एक तसलसल के साथ पेश की जाती हैं। ये आपका जाती दोस्त और ख़ानदान का हिस्सा बनकर रहता है, घर हो, दफ्तर हो या सफ़र की राह। जनाब, जब रात की आखिरी सांस हवा में घुलती है और मशरक़ के किनारे पर रोशनी का पहला ताकतवर ऐलान होता है, तो कायनात एक बार फिर इंसान को याद दिलाती है कि हर तारीकी के बाद एक नई तख्लीक का इम्कान मौजूद है। इस लम्हे में न सिर्फ सूरज तलू होता है बल्कि इंसानी रूह में भी एक पोशीदा दरवाज़ा खुलता है, एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ से उम्मीद, शऊर और इरादे की नई लहर निकलती है। पयाम सुबह इसी लम्हे का तर्जुमान है। ये महज एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक दानिशवराना बेदारी का आहंग है जो हर सुबह आपके वजूद के अंदर मौजूद पॉसिबिलिटीज़ को जगाने के लिए हाजिर होता है। हम न तो सिर्फ खबरें देते हैं और न ही सतही खुशियों का सामान, हम आपके अंदर वो शऊर पैदा करना चाहते हैं जो आपको दिन भर की हंगामा खैजी में भी अपने असल मकसद से जोड़े रखे। हम चाहते हैं कि आपकी सुबह एक आम मामूल न रहे बल्कि एक बाशऊर आगाज बन जाए, जहां जिस्म, जहन और रूह तीनों हम आहंग होकर चल पड़े। जी सादत साहब।
0: जी आमिर, आपने जो बात की वो दिल को बहुत छू गई। वाकई जब रात की आखिरी सांस हवा में घुलती है तो कायनात सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि इंसानी वजूद में भी एक नई तख्लीक का ऐलान करती है। पयाम सुबह इसी ऐलान का तर्जुमान है, एक नरम आवाज, एक गहरी सोच और एक वफादार साथ। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यह प्रोग्राम महज खबरें देने वाला जरिया नहीं बल्कि एक बाशऊर बेदारी पैदा करने का जरिया भी है। हमारा मकसद ये है कि सुनने वाला हर सुबह अपने अंदर एक छोटा सा इनकलाब लेकर उठे, चाहे वो अपनी आदत बदलने का फैसला हो, अपने इरादों को वाजह करने का अजम हो या सिर्फ एक मुस्बत सोच के साथ दिन का आगाज करना हो।
1: जी,
0: ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर सुबह एक नई तख्लीक का वक्त है। हम चाहते हैं कि आप इस तख्लीक के फनकार बने। हम आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे जो जिंदगी को बदल देती हैं। सेहतमंद आदत, मुस्बत सोच, अमली हिकमत और मुआशरती शऊर।
1: जी बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। हर सुबह हमें एक कायनात एक नया मौका देती है कि हम अपनी कहानी को नई समत दे सकें। पयाम सुबह इसी मौके का एहतराम करते हुए हाजिर होता है, न बुलंद आवाज में, न झंझोड़ कर, बल्कि एक नरम, गहरी और बाशऊर आवाज में।
0: हमें क्यों ना आगे बढ़ने से पहले अपने सुनने वालों का एंटरटेनमेंट एक खूबसूरत कश्मीरी गीत से करते हैं।
1: हाँ जरूर, ये कश्मीरी नगमा हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, एक बहुत ही मशहूर फनकार। जरा सुनिए और इस फनकार को पहचानने की कोशिश कीजिए।

0: को जोड़ सकती है। समीन, आपको बताते चलें कि 1970 की दहाई में जब वो कश्मीर आईं, तो वादी ने न सिर्फ उनकी मेहमान नवाजी की बल्कि अपनी धुन भी सौंपी। उन्होंने महमूद गामी के शहकार इस नगमे को, कत्युछुक नुंदबाने वलो माशुक मैंने को, अपनी आवाज़ में ऐसा ढाला कि आज भी ये गीत कश्मीर की वादियों में गूंजता है। फैरन ओढ़े कश्मीरी लहजे की नज़ाकत को अपने गले में समोने वाली रोना लैला की आवाज़ न सिर्फ फनकाराना है बल्कि दो सकाफतों के दरमियान एक खूबसूरत पुल भी है। रोना लैला का कश्मीरी गीत महज एक गाना नहीं बल्कि एक तजर्बा है, जहां बांग्लादेश की मिठास कश्मीर की सूफियाना गहराई से मिलकर एक अनोखा रंग पैदा करती है। इनकी आवाज में कश्मीर का दर्द, मोहब्बत और रूहानी पैगाम एक साथ गूंजता है।
1: बिल्कुल सही समीन, अब वक्त हो चला है पीछे मुड़कर तारीख के आईने में झांकने का। देखते हैं आज यानी 20 मई को कौन कौन से अहम वाकात रोनुमा हुए हैं।
0: जी हाँ, 20 मई तारीख के आईने में एक अहम दिन है, जिस दिन दुनिया भर में मुतअद्दिद यादगार वाकयात पेश आए हैं। इस दिन दुनिया भर में मुतअद्दिद यादगार वाकयात पेश आए हैं। ये दिन ईसाई तारीख, इस्तेमाली दौर, साइंस, सियासत और सकाफती तब्दीलियों से जुड़ा हुआ है।
1: समीन, 20 मई को कई एक अहम आलमी तकरीबात मनाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुमाया है यूएन वर्ल्ड बी डे यानी आलमी यौम शहद की मक्खी।
0: जी, नोबल इनाम याफ्ता मशहूर रूसी मुसन्निफ मिकाइल शोलोखोफ, जिन्होंने शहकार नावल क्विट फ्लोज द डॉन लिखा, 20 मई 1905 को पैदा हुए।
1: जी, कौमी सतह पर यह दिन 1982 में पहले घरेलू मवासलाती सैटेलाइट इनसेट 1A के लॉन्च की सालगिरह के तौर पर याद किया जाता है। 20 मई 1982 को लॉन्च किए गए इस सैटेलाइट की कामयाबी ने घरेलू मवासलाती, मौसमियाती और टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इनकलाब बरपा कर दिया।
0: 1927 में चार्ल्स लैंडबर्ग ने सुपरी टॉप एसटी लुइस तैयारे से अटलांटिक समंदर के ऊपर पहली नॉन स्टॉप अकेली परवाज शुरू की। 1932 में इसी दिन अटलांटिक के ऊपर अकेले एयरहंट इमलिया परवाज का आगाज किया। अमरीकी माहरीन तबियात रॉबर्ट वुड्रो विल्सन और अर्नो पेंजरिस, जी हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, 1964 में इसी दिन माहरीन फल्कियात ने कायनात की पैदाइश बिग बैंग के बाद बच जाने वाली शुआओं को दरियाफ्त किया, जिसने कायनात के आगाज को समझने में मदद दी।
1: जी, 1498 में पुर्तगाली मुहिमजू वास्को डे गामा कोझीकोड कैलिकट पहुंचे, जिससे यूरोप और एशिया के दरमियान बराह रास्त समुद्री रास्ता खुल गया। 1873 में लेविस स्ट्रॉस और जैकब डेविस को कॉपर रिवेटेड यानी तांबे के रिवेट्स वाली ब्लू जीन्स का अमरीकी सरकारी पेटेंट दिया गया।
0: वास्को डी गामा की बात आपने की, ये यूरोप से समंदरी रास्ते के जरिए भारत आने वाला पहला यूरोपी था जिसने यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत के नए रास्ते खोले और इस्तेमारी दौर की बुनियाद रखी।
1: जी,
0: क्या आप जानते हैं कि 20 मई 1932 को दुनिया की तारीख में पहली बार एक खातून पायलट एमिलिया एयरहार्ट ने अकेले बहरे ओकियानूस को पार करने के लिए उड़ान भरी? उन्होंने न सिर्फ तारीख रकम की बल्कि इस दौर के मीडिया और रेडियो पर इनकी इस हिम्मत को दुनिया भर में लाइव खबरों का हिस्सा बनाया गया था।
1: जी समीन, 1875 में 17 ममालिक ने बैनुल अक्वामी महादे पर दस्तखत किए, जिससे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कायम हुआ और मेट्रिक सिस्टम को मेयार बनाया गया। 1983 में आज ही फ्रांसीसी साइंसदानों ने HIV एड्स का सबब बनने वाले वायरस की दरियाफ्त पर पहली तहकीक शाया की।
0: समीन, इसके अलावा मई का ये खूबसूरत महीना बहार के जोबन और वादियों में जिंदगी की नई लहर लेकर आता है। सहर अंगेजी का वक्त हो, माइक्रोफोन के सामने की रौनक हो या तारीख के गोशे, हर दिन अपने अंदर एक नया पैगाम, एक नई सुबह छुपाए हुए होता है। बहरहाल, वक्त की लहरें तारीख के साहिल पर कुछ ऐसे नकूश छोड़ जाती हैं जो सदियों तक मिटाए नहीं मिटते। देखिए ना, आज हम तारीख के अवराक पर नजर दौड़ाते हैं तो दिल के निहां खाने से एक सदा आती है कि इंसान तो बस एक मुसाफिर है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसके फैसले, इसका अज़्म और इसके इकदाम वक्त की किताब में हमेशा के लिए रकम हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि वक्त की लहरें तारीख के साहिल पर कुछ ऐसे नकूश छोड़ जाती हैं जो सदियों तक मिटाए नहीं मिटते। दोस्तों, वक्त की ये लहरें कभी साकित नहीं रहती, ये बहती रहती हैं और अपने साथ साथ जमानों की दास्तानें बहाकर लाती हैं। आज की तारीख यानी 20 मई तारीख के इसी समंदर का एक ऐसा साहिल है جہاں ایسی کئی

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: पयाम सुब श्रीनगर से नश हो रहा है। समीन, आपको बताते चलें कि आज के बाहमी गुफ्तगू प्रोग्राम यानी जो हम पेश करते हैं आपके लिए इंटरैक्टिव लाइव शो सुबह 10:30 बजे, उसमें हमारे मेहमान होंगे फुटबॉल प्लेयर कम कोच मोहम्मद हनीफ साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे मेरे साथी सादत खान और नवाज शरीफ जो हमें सुबह 10 बजे जुड़ जाएंगे।
6: सावन प्रोग्राम पायाम सुबह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से अपने दोस्त सादत खान और आमिर अशरफ के साथ।

0: के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई।
1: अत दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशान द्राबी वोनमुत जम्मू कश्मीर मन मनुष्यात नेटवर्क कुनवुह शेथ कुननमत पेठ दहशत पसंदी सत कान समाजस मज अमिक जड़ सेटा मजबूत। रात बड़गामे असलुक आलो नव प्रोग्रामस मज वो तमो जम्मू कश्मीर मज शुरू कर आमते नशा मुक्त अभियान से अभियान वे अवमी तहरीक शकल अख्तियार करम। पुणे मज कायम सरहद नव अके गैर सरकारी तंजीमी को रात एस के आई सी सी श्रीनगर ललदर एवार्ड अता कर बापत अके प्रोग्राम सज या दौरान चौदहवी सदी हिंज कशर जबान हिंज शायर ललदे खराज अकीदत अदा कर सान तिज काम हिंज सराहना करना आई। अत मौकस पे आव जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशान द्राबी ते ललदे एवार्ड अता कर एवार्ड हासिल करनस पे वो तमो पन्न तौसरात बावान।
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घरों में ललित का नाम हर एक औरत से मंसूब किया जाता है, वो नाम जो उस लेडी के लिए लिया जाता है कि वाकई इच्छा ललित, तो उस अवार्ड से नवाजा जाना और वो लेना मेरे लिए बायसे फख्र है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस तंजीम ने मुझे चुना और मेरे काम की सराहना यहाँ पे हुई, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस
1: सुप्रीम कोर्टन गोडनिक फिर इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बेमार मज मुबतला हून मारन इजाजत दुमत अदालतन इंसान जिंदगी हंद तहफुज तो आवाम के हफाजत हवाले दिवान यह फैसला बोजनोमुत। दोयमी तरफ कर सुप्रीम कोर्टन राह तम सारे अर्जी खारिज इन अंदर आवार हून कुनि दोयमी जाए निनस तिहज नसबंदी करनस मुतलिक अदालत अमे ब्रोहिम फैसला वापस ननुक दरख्वास्त करना आमुत ओस। अदालतन वोन जे वेकार सान जिंदगी गुजारन हक गो जे इंसान गछे आजादी सान फिर तूरित हेकुन तो अथ अंदर गछन होने दस चोप दिनुक या का नुकसान वातनावनुक खतरे ते आसुन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन नवी दिल्ली चु तलीमी वरी जतवु सतवु बापत उर्दू सहाफतस मज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स खतर दाखलुक ऐलान कोरमुत। आई आई एम सी नई दिल्ली हिंज वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौरन वोनमुत कोर्सस मज तृह निशस्त दस्तियाब तो रजिस्ट्रेशन आखिरी दौ चु शतवु मई यल जन इम्तहान अवली जून हन यी।
3: आईआईएमसी की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए आईआईएमसी की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315।
1: जम्मू कश्मीर बैंक चु योटी मज मुख्तलिफ सेक्टरन वथवाशर दिन सान लुकन थदि मैार चे बैंकिंग सहूलत दस्तियाब थावान तो अथ बैंकस जम्मू कश्मीर किस इक्तिसादी मंजरनामस अके थर कण्यक मकाम हासिल। अमे हवाले वोन जम्मू कश्मीर बैंकिंग मैनेजिंग डायरेक्टर तो सीईओ अमिताभ चटर्जियन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान।
4: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है।
1: भारतीय मौसमियात महकमन ब्रेसवार ताम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो विदर्भस मज रोतल ग्रीष्म क्राई बापत रेड अलर्ट जारी करम। महकमन आज बापत पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तो दिल्ली मज सठा शदीद गर्मी हिंस पेशगोई करम। आईएमडीन वोनम इन वाल दोन त्रेन दोहन दौरान यी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान जनूब मगरबी बिहार छत्तीसगढ़ तेलंगाना सहली आंध्र प्रदेश यानम मराठवाड़ा तो उड़ीसा मज ग्रीष्म क्राई मज हुर अ दौरान मौसमियात महकमन यम रेतन अकवुहस तारीखस ताम अंडमान निकोबार।

20 मई 2026 सुबह के 7:55 हुए हैं। पेश है अब के बाद आज हमारे यहां से नष्ट होने वाले बकिया प्रोग्रामों की तफसील। सनी फनकार, ये प्रोग्राम सुनिए रात 9:30 पर। मेहमान हैं गुलकार और मौसीकार मुनीर अहमद मीर और मेजबान गुलाम रसूल आखोन। हेलो महफिल गज़ल समिन, उर्दू गज़लों की फरमाइशी महफिल आरास्ता होगी शब 10 बजे। महफिल की मेज़बान है इरम कुरैशी। जू उर्त जहां उर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे नश होती हैं आज की सुर्खियां। कश्मीरी गजलें आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:30।

अब्द रशीद हाफिज और साथियों से आप छकरी और उर्फ सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर और सपहर 4:30 पर। इनसे आप बेतरतीब कलाम रहमान दारियल, कलाम अहद जरगर और कलाम स्वच्छक्राल सुनेंगे। चंद फिल्मी नगमे सुनिएगा 12:10 पर। बज़्म निस्वां सजती है 12:40 पर। इसमें प्रोग्राम की मेहमान मुजीबा अख्तर के साथ गुफ्तगू होगी। मौजू है खानदर।

उमंग। ये स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है दिन में 1:10 पर। सुपहर 3 बजे नश्र होता है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे ब्रॉडकास्ट होता है। मेजबान है ख्वाजा परवेज। गोजरी प्रोग्राम सुनिए शाम 5 बजे। गर्मी बाय नहीं दिखत्र। समय इस प्रोग्राम में शाम 6:05 पर मामूल की नशरियात के अलावा बच्चों की हफ्तावार महफिल भी सजेगी फॉलोइंग टूर। शहरबीन नश्र होता है शाम 7 बजे। वादी की आवाज प्रोग्राम रात 8 बजे सुना जाता है। रात 8:30 पर जिला नामा नश्र होगा। इसमें जिला पुलवामा के हवाले से बात होगी। और रात 9 बजे चंद कश्मीरी गजलें आपके लिए पेश करेंगे। समय ये थी तरतीब व तफसील आज अब के बाद हमारे यहां से नश्र होने वाले बकिया प्रोग्रामों की। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से बोल रहे हैं मीडियम वेव 1100

16 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पयाम सुबह उनवान के तहत हमारी ये नशरियात आप तक पहुंच रही है, नशरियात जारी है। स्टूडियोज़ की घड़ी इशारा कर रही है कि सुबह के 8 बजने को हैं। फिलहाल के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली का रुख करते हैं हिंदी खबरों के लिए।

0: लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें।

0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर

0: मैं हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग

0: विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचार के साथ हैं आनंद पाठक।
1: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है।

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयाम सुबह की नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। आप सुन रहे हैं अपने मेज़बान आमिर अशरफ और सादत खान के साथ। चूंकि हमारा आज का जो मरकज़ी मौजू होता है वो खेल से जुड़ा होता है, सादत इस हफ्ते का स्पोर्ट्स राउंड अप पेश करते हैं
1: जी।
0: नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अहम खेल खबरों पर। क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो IPL 2026 अपने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां मुख्तलिफ टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कई नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर सबकी तवज्जो हासिल की। दूसरी जानिब बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में भी कई अहम सीरीज जारी हैं, जिनमें बैटर्स और बॉलिंग करने वालों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला
1: जी। और अगर फुटबॉल की बात करें, यूरोपीय फुटबॉल लीग्स में टाइटल की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई है। कई बड़े क्लब अहम फतूहत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन मजबूत बना रहे हैं। शायकीन को इस हफ्ते कई सनसनीखेज और आखिरी लम्हों में फैसला होने वाले मैचेस देखने को मिले।
0: जहां बैडमिंटन की बात करें तो एशियाई सरजमीन पर जारी टूर्नामेंट्स में भारतीय और बैन अल-अक़वामी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी खास तौर पर काबिले तारीफ रही।
1: और टेनिस में आलमी टेनिस मुकाबले में बड़े नामों ने अपनी बरतरी बरकरार रखी, जबकि कई अपसेट्स ने शायकीन को हैरान भी किया। आने वाले ग्रैंड स्लैम इवेंट्स के लिए खिलाड़ी भरपूर तैयारी में मसरूफ हैं।
0: जी हाँ, और हॉकी में बात करें तो हॉकी के मैदान में भी इस हफ्ते कई अहम मुकाबले हुए हैं, जहां टीमों ने शानदार टीम वर्क और स्किल्स का मुजाहिरा किया। नौजवान टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, जो खेल के रोशन मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। सादत सब मेचुबासा इतन करो दादा सबुन कलाम पेश, तो अथ कलामस आवाज़ दिसम अल्ताफ अहमद डार सबन
1: वलियो बोसो।

0: अमीर अपने सामीन को बताते चलें कि इस सोमवार यानी 17 मई से मुल्क के साथ साथ वादी भर में भी मरदुमशुमारी 2027 का पहला मरहला खुदशुमारी यानी सेल्फ एनुमरेशन शुरू हो गया है।
1: भारत की मरदुमशुमारी 2027 जो है ना, ये दो मराहल में मुनक्कद की जा रही है, जो मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदुमशुमारी है। जम्मू कश्मीर में भी ये अमल खास तौर पर बर्फानी और गैर मुतवाज़ी इलाकों को मद्दनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है। ये मरदुमशुमारी 2011 के बाद तवील वक्फे के बाद हो रही है और कह लीजिए कि इसमें पहली बार ज़ातों की गिनती भी शामिल है।
0: जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, मरदुमशुमारी मुल्क, रियासत या समाज के लिए एक अहम मरहला होता है, जिससे तामीर और तरक्की की मनसूबाबंदी आसान हो जाती है और मुख्तलिफ शोबों के बाकायदा और मुनज़्ज़म आदाद व शुमार सामने आ जाते हैं।
1: या इस मरहले में घरों की फहरिस्त साजी, रिहाइश की हालत, सहूलियात जैसे कह लीजिए कि पानी, बिजली, बैतुल खुला, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी और घरेलू असासों की मालूमात जमा करने पर मुश्तमिल है। जम्मू कश्मीर में खुद शुमार यानी जैसे हम सेल्फ इनूमरेशन भी कहते हैं का अमल मई 2024 के वस्त से शुरू हो चुका है।

0: कि डोर टू डोर प्रोसेस यकमजून से शुरू हो रहा है।
1: जी, इसलिए हम सबको खुदशुमारी के सम्मेलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आप se.census.gov.in पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स आज खुद दर्ज कर सकते हैं।
0: जहाँ शहरी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात खुद भर सकते हैं आप, जो अमल को तेज़ करता है और शफाफ बनाता है। इस मरहले में 30 से 33 सवालात पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आसान हैं, आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं। इसका एक और मरहला जो है वो आने वाला है, इसमें अफराद की तफसीली गिनती, आबादी की आदद व शुमार, तालीम, नकल हरकत, ज़रखेज़ी, मौशी हालत और ज़ात की मालूमात जमा की जाएंगी। आम इलाकों में ये फरवरी 2027 में होगा, जबकि बर्फानी और पहाड़ी इलाकों जैसे हमारे कश्मीर के कुछ हिस्सों में ये सिलसिला जो है सितंबर 2026 में पहले ही मुकम्मल किया जाएगा ताकि मौसम की रुकावट ना हो। यह मरदमशुमारी तरक्याती मनसूबों, वसाइल की तकसीम, इंतखाबी हलकों की हदबंदी और पॉलिसी साजी के लिए बहुत अहम है। समय हुकूमत ने डिजिटल टूल्स जैसे GIS मैपिंग और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके इस अमल को जदीद बनाया है। लोगों से अपील की जाती है कि दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात दें ताकि नतीजे दुरुस्त हों। अगर आपके इलाके में अमल जारी है तो खुदशुमारी पोर्टल पर ज़रूर हिस्सा लें। मजमूई तौर पर यह मरहलावार अमल जम्मू कश्मीर की खास जुग्राफियाई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबा बंद है और खित्ते की तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करेगा।
1: तो ज़मीन, ये थी कुछ जानकारी मरदमशुमारी 2027 के हवाले से।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जियो मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की GDP की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। DGCA ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मटरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरक प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक

0: नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तिजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तिजारती और इक्तसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का माहिदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाजह और मुश्तरका मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मियार नहीं।
0: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: पेश है वजीर आजम के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
2: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वजीर आजम ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी, समुद्री मईशत, जहाज़ों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आज़ाद तजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज़ में सख्त मजम्मत की। वजीर आजम ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद ख्वातीन को उनकी समाजी व इक्तसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम ख्वातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी, कानूनी, पंचायती, बल्दियाती, मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाई की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असम्बली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मरतबा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने DGCA के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। DGCA के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के 2 रोज़ा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कान और हमारे मुल्क में गजाई सिक्योरिटी, माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेकाम, सलामती और समंदरी रास्तों की आज़ादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की GDP की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अनु होंडा ब्रश कटर यह ची लोकल दहन ब्रश कटरन बराबर नत मान तो मोन ऐन यह ब्रश कटर जेके स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर वाले नश
1: बहुस ती सोचान दपान एक्सचेंज मोल चलान चुना सलाह बह दिमे तिमन प्रोन ब्रश कटर तो एक्सचेंज स्कीम तहत हम नो होंडा ब्रश कटर
0: वार कर वो क्या गो जान
2: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: दुबई भोजन
8: तो खराब गुप शेरनस वनो शेष्टर वालिस अपोर शेष्टर वोल
7: गुना पे शेष्टर वालिस क्या दूम सारी जे के स्टेशनरस वाले नश तेजेंज स्कीम चलान योर निक प्रण तोर अनक नई ब्रश कटर दवा मोटर आब मोटर
8: रबत करू एथोराइज डीलर जे के स्टेशनरस मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
9: वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आप बराह रास्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त आज की सुर्खियां समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह में। अखबारात के अंदरून सफात पर शाया हुई सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। अखबारात लिखते हैं सबसे फॉल दही तरक्याती महकमा गैर फॉल क्यों, वादी में 57 ब्लॉक बीडीओ के बगैर, 2 साल से फाइल इंतजामिया की मेज पर, मुतालिका वजीर की मंजूरी के बाद भी मामला लटका हुआ है।
10: समीन एक अंग्रेजी अखबार के पहले सफे पर छपी खबर की सुर्खी है ओवर 1.5 लाख हाउसहोल्ड्स कंप्लीट सेल्फ एन्यूमरेशन इन फर्स्ट 3 डेज अक्रॉस J&K, स्पेशल मैकेनिज्म डिवाइस फॉर माइग्रेटरी ट्राइबल पॉपुलेशन कवरेज। इसी अखबार में छपी एक और खबर की सुर्खी है CS कॉल्स फॉर कंक्रीट एक्शन प्लान टू कंट्रोल कैंसर इन J&K, स्ट्रेसेस क्रिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्री, अर्ली डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स इन कोलेबोरेशन विद ICMR।
9: एक उर्दू रोजनामे के बॉटम लाइन की सुर्खी है यूटी में खवातीन कौमी कमीशन का दफ्तर खोलने के लिए वजारत दाखला की मंजूरी तलब।
10: एक और सुर्खी है MET प्रेडिक्स लाइट रेन थंडरस्टॉर्म टिल May 21st। इसी अखबार के स्पोर्ट्स पर छपी खबर की सुर्खी है इंडिया अनाउंसेस स्क्वाड्स फॉर अफगानिस्तान टेस्ट ODI सीरीज।
9: मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और इसके बॉटम लाइन की सुर्खी सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को हटाने से मुतलिक अपने पिछले हुक्म में तब्दीली करने से इनकार, अदालत उज़्मा ने हुक्म पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग भी दी। इसी रोजनामे से एक और खबर ईद उल अज़हा की आमद, कुर्बानी के जानवरों की कीमतें बेलगाम, कोई हद मुकर्रर न होने से नाजायज मुनाफाखोरी के खदशात।
10: एक और खबर की सुर्खी है पार्लियामेंट पैनल टू सीक फीडबैक ऑन J&K's MSME क्रेडिट बॉटलनेक्स। एक और सुर्खी है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल रैप्स अप KCFL फुटबॉल ट्रायल्स अक्रॉस कश्मीर।
9: एक उर्दू रोजनामे के अंदरून सफे पर यह तश्वीशनाक खबर शाया हुई है कि कश्मीर में शरह पैदाइश में कमी, तौलीदी दौरानिया सुकड़ने की कगार पर। इसी रोजनामे से एक और खबर बारामुला में सैनिटरी सामान के गोदाम में खौफनाक आग, करोड़ों का नुकसान।
10: एक और सुर्खी है फ्यूल सप्लाईज नॉर्मल इन J&K डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज।
9: अखबारात लिखते हैं मुल्क में पानी का बहरान, 13 बड़े आबी जखायर में पानी निस्प से भी कम।
10: एक और सुर्खी है तेंदुलकर अर्जस यंग क्रिकेटर्स टू फोकस ऑन डिसिप्लिन प्रिपरेशन ओवर शॉर्टकट्स।
9: शुमाली हिंदुस्तान में आसमान से बरस रही है आग, पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान, एडवाइजरी जारी।
10: और ये एक सुर्खी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड ISL कैंपेन विद विन ओवर रेलिगेटेड मोहम्मदन स्पोर्टिंग।
9: ललदित का पैगाम इंसानियत के लिए लाइफलाइन, LG मनोज सिन्हा। खवातीन की बाइख्तियारी अव्वलीन तरजीह, श्रीनगर में नारी शक्ति को ललदित नेशनल अवार्ड से

0: होते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई।
1: ट्रांसपोर्टिक वजीर सतीश महनकुर द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर कायम करने के 5 वरी मुकमल सपदन के सिलसिलस में बेंगलुरु वाका सेंटर दौरा पनिस दौर दौरान कर सतीश महन गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर सत मुलाकात तो कर्क नविस दास्तुल नाम तिस ध्यान मंदिरस में अकिस खसूसी सत्संगस में शिरकत। इजतिमाज खिताब करान सतीश महन से समाज पायदार बनानस में गि हमदर्दी थी इजतिमाही कोशन पोशर दिन यन। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी हिंदन मुख्तलिफ सेक्टरन वत बव दिन तो लूकन बेहतरीन मैच बैंकिंग सहूलत आयतन थाने बापत प्रेथ मुमकिन कदम तुलान अत मुतलिक वो जम्मू कश्मीर बैंकिंग मैनेजिंग डायरेक्टर तो सीईओ अमिताभ चटर्जी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से कतबात करने दौरान
2: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सबको जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिसपे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। जो 2363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस।
1: पोनी हिज एक मरूफ तंजीम सरहद के अहतमाम आए रात श्रीनगर लल दैद अवार्ड तकरीब मनकद कर तकरीबी दौरान दि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान हिंदन चौन मुमताज़ खवातीन तिहजन थक लायक खदमतन हिंदिस एतराफस मज लल दैद अवार्ड। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षान द्राविस आव जम्मू कश्मीरस मज दोन दुहलन दरमियान सूफी तो ऋषि रवायत अंदर नव जू जैत त्रावनस तो मुख्तलिफ तबकन दरमियान पानवन बई बदस पोछर दिनस मज मिसाली किरदार अदा करनस पे ये इनाम दिन। सरहद कौमी चेयरमैन संजीनी हारन वोन से डॉक्टर अंद्राबी सन्ज समाजी तो अदबी खदमत तारीफ लायक। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी सरहद तंजीम हुंद शुक्रिया अदा कोरमुत। खवातीन हिंद कौमी कमीशन के अहतमाम सपुद श्रीनगर महिला जन सुनवाई प्रोग्राम मुनद ये भी सदारत कमीशन चेयरपर्सन विजय के राहतकारन कर अमे प्रोग्राम मकसद जनान शिकायत जल्दी अंजराने अत मौक पे आई 14 मामलन सुनवाई कर प्रोग्राम में आई श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर अक्षय लावरो तो एस एस पी श्रीनगर डॉक्टर जी वी संदीप चक्रवर्ती अलावा दुम कह अफसर तौजूद। वन नेशन वन इलेक्शन पे तश्कील दिन आमित मुश्तरक पार्लिमानी कमेटी हिंद चेयरमैन पी पी चौधरी वोनमुत मुल्कस मज हि लोकसभा असम्बली तो बलदियती इदारन हिंद चुनाव यकवट कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये बचत कर गांधी नगर गुजरात में अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करान वो तमो अमे अमल सपद मुल्क जी डी पी मशरिया 6% हुरियर। नौजवानन हिंद सलाहित कामें लागन तो तिज शमूलियत बाख्तरी तो तरक्की बापत अख मरबूत निजाम कायम करने की गर्ज मनसूबाबंदी तो तरक्ती निगरानी महकमा तमाम जिलन में जल्दी अख यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम वाई ई पी शुरू करान चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलवन हूत रात अकिस मीटिंग में अमे प्रोग्राम बापत करने तैयार जायजा। चीफ सेक्रेटरियन कर वाई ई पी पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड नौजवानन फराहम कर वाजन सहूलतन तो खदमतन मुतलिक तफसीली जानकारी फराहम। गांधरबल जिले तरकती कमिश्नर जतिन किशोरन हूत रात अकिस मीटिंग दौरान जिले के शहरी तो गमी इलाकन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2017 नफिज करने जायजा। तमो हूत दुरुस्त जिले में ठोस छटक इंतजाम किस मौजूदा निजाम तो तरीकेकार जायजा। डिप्टी कमिश्नर दु साफ सफाई हिंद इकदाम असरदार पे नफिज करने की जरूरत पे जोर तखरस पे दर्ज हरारत श्रीनगर रज हूं कम खुद कम दर्ज हरारत 17.8 डिग्री सेल्शियस जुमे रज हूं कम खुद कम दर्ज हरारत 18.1 डिग्री सेल्शियस रिकॉर्ड करना। इस वोत खबरन हूं बुलेटिन खुदा हाफिज।

0: स्थापित होते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई।
1: ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के कयाम के 45 वर्ष मुकम्मल होने के सिलसिले में बेंगलुरु में वाकई सेंटर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सतीश शर्मा ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की और नए इफ्तिताहशुदा ध्यान मंदिर में एक खसूसी सत्संग में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि समाज को मुस्तहकम बनाने में हमदर्दी और इज्तिमाई कोशिशों को फरोग दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सबको जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिसपे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। जो 2363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस।
1: पुणे की एक मारूफ तंजीम सरहद के अहतमाम से कल श्रीनगर में ललित अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की चार मुमताज खवातीन को उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ में ललित अवार्ड से नवाजा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरक्षा अंद्राबी को जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दो दहाइयों के दौरान सूफी और ऋषि रिवायात के अहिया और मुख्तलिफ तबकों के दरमियान हम आहंगी व भाईचारे को फरोग देने में मिसाली किरदार अदा करने पर इस अवार्ड से सरफराज किया गया। के कौमी चेयरमैन संजय निहार ने कहा कि डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी की समाजी और अदबी खिदमात काबिल सताइश हैं। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने सरहद तंजीम का शुक्रिया अदा किया। खवातीन के कौमी कमीशन के अहतमाम से श्रीनगर में महिला जन सुनवाई प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत कमीशन की चेयरपर्सन विजया के राहत करने की। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन की शिकायत को के फोरी अजालिक को यकीनी बनाना था। इस मौके पर 14 मामलात की सुनवाई की गई। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू और एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती के अलावा दीगर कई अफसरान मौजूद थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा है कि मुल्क में लोकसभा असेंबली और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात एक साथ कराने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। गांधीनगर गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस अमल से मुल्क की GDP में 1.6% का इजाफा मुमकिन है। नौजवानों की सलाहियतों को बरोयकार लाने और उनकी शमूलियत बाइख्तियारी और तरक्की के लिए एक मरबूत निज़ाम कायम करने की गरज से मनसूबाबंदी तरक्की और निगरानी महकमा तमाम अजला में अनकरीब एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम YEP शुरू कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो ने कल एक मीटिंग में इस प्रोग्राम के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने YEP पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड नौजवानों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और खदमात पर तफसीली जानकारी हासिल की। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल जितिन किशोर ने कल एक मीटिंग के दौरान जिले के शहरी और दीही इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के निफाज का जायजा लिया। उन्होंने जिला भर में ठोस कचरे के इंतजाम के मौजूदा निजाम और तरीकेकार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई के इकदाम के मौसर निफाज की जरूरत पर जोर दिया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.8 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: ये आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 77.8 मीटर तो FM 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पे सुबह 9:30 बजे।

तो इस वक्त यहाँ कुछ गजल बोजान आकाशवाणी श्रीनगर बैठे सामने मोहतरम सुबह ठीक दह हेचन बजने वलि बोजो प्रोग्राम सूफी सदा अतम सपद शारी कश्मीर पीरजदा गुलाम महमद महजूर सबस मुतलिक सामने मोहतरम वन के पत दिन तुहन साथ मीन सेथी सईद नवाज शरीफ पन्नस मेजबानस दियो इजाजत खुदा हाफिज बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश सब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविंतुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़े 10 बजे ताम नश्र सब्दान।
2: सविंतुएसु सूफी तो ऋषि वैचारण पेट मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। आज प्रोग्राम होस मारूफ शायर पीरजादा غلام احمد مہجور اس متعلق تحریر ڈاکٹر شفیع شوق۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ اب آپ ہمارا لائیو شو پیام صبح سنیں گے۔
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से प्रोग्राम पयाम सुबह। मैं हूं सआदत खान। प्रोग्राम का आज का इंटरव्यू सेगमेंट फुटबॉल के नाम। एक ऐसा खेल जो सिर्फ गोल करना ही नहीं बल्कि टीम वर्क, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी भी सिखाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फुटबॉल के जरिए न सिर्फ प्लेयर्स को ट्रेन किया बल्कि यूथ को एक पॉजिटिव रास्ता भी दिखाया है। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, जो एक साबिक फुटबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ एक माहिर और जाने माने फुटबॉल कोच हैं। हनीफ साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है।
4: जी शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए, मेहरबानी आपकी।
3: दोस्तों अपने मेहमान से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करने से

0: दोस्तों उम्मीद है आपको ये नगमा पसंद आया होगा, तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हनीफ साहब, सबसे पहले हमें कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पैदा हुए और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई?
1: जी मैं रैनावारी में रहता हूँ। मैं एक फुटबॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर में ऑलमोस्ट सारे फुटबॉल के प्लेयर हैं
0: जी।
1: सबका रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट फुटबॉल पे ही हुआ है। कुछ नेशनल प्लेयर हैं और एक इंटरनेशनल प्लेयर महराजुद्दीन वडू, और उनके फादर, मेरे फादर भी पीडीटी डिपार्टमेंट में खेलते थे, उनके फादर एसआरटीसी डिपार्टमेंट में खेलते थे। दैट मीन्स कि मैं फुटबॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फुटबॉल का सिलसिला रैनावारी में ही लोकल ग्राउंड में स्टार्ट हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते मैं स्कूल चेंज किया, लाल बाजार पढ़ने गया वैली विटास्टा में। उसके बाद मैंने बिस्को स्कूल को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद एसपी कॉलेज, उसके बाद अंडर 16, 19 जो भी नेशनल्स हैं वो खेले। जे एंड के अंडर 19 कैप्टन भी रह चुका हूँ मैं। संतोष ट्रॉफी महाराष्ट्र में खेली है, अंडर 21 भी खेला है, ऑलमोस्ट इंडिया में हर किसी जगह खेला है, एक दो स्टेट्स को छोड़ के। फुटबॉल का टेन्योर खत्म होती है फिर मैंने कोचिंग का पढ़ाई स्टार्ट किया।
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है बचपन से फुटबॉल की तरफ आपका रुझान था?
1: जी पहले से ही।
0: तो कोई और स्पोर्ट्स आपने नहीं खेला है?
1: नहीं नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं बचपन से ही 12 साल का था जब मैंने स्टार्ट किया। फिर अंडर 14 से लेके जितने भी नेशनल्स 14, 16, 19, 21 स्कूल नेशनल, सुब्रोटो कप, उसके बाद जब मेरा जॉब हो गया उधर, जितने भी नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स हैं, डोरांड आई लीग, फेडरेशन कप, जीवी राजा गोल्ड कप, वो मैंने सारे खेले हैं। उसके बाद जब फुटबॉल 2020 में रिटायर हो गया, 2020 में, उसके बाद कोचिंग की पढ़ाई स्टार्ट की, जो मैं अभी ए लाइसेंस कर रहा हूँ। पहले ई डी सी बी पास किया, अभी ए लाइसेंस में चंडीगढ़ से कर रहा हूँ।
0: जी जी। तो फुटबॉल का सफर आपने बचपन में अपने घर से ही शुरू किया?
1: जी जी जी।
0: बहुत बचपन में कोई टूर्नामेंट, कोई फुटबॉल प्लेयर या टीम जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हो?
1: जी यहाँ पे पहले से ही जो अभी भी है एक मशहूर टीम है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक।
0: जी।
1: तो उन्हीं में से एक प्लेयर था पहले जब मैं खेलता था उस टाइम पे, जो मेरा फेवरेट हुआ, उनको बोलते थे लतीफ़ साहब।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो स्टॉपर खेलते थे, उन्हीं को देख देख के। और वहाँ पे एक दो प्लेयर और थे जैसे जोहर अहमद तेली थे, और मिडफील्ड में जो एक प्लेयर था जम्मू एंड कश्मीर बैंक में, उनका नाम था इंतखाब आलम।
0: जी।
1: तो उनको देख के, और हमारे घर में ही एक इंटरनेशनल प्लेयर मेरे कज़न ब्रदर महराजुद्दीन वडू, उनको देख के भी हमने फिर इंस्पायर हो गए आगे जाके कि हमको भी कुछ करना है
0: फुटबॉल में।
1: फुटबॉल में, और फुटबॉल में ही करेंगे इंशाल्लाह, फुटबॉल में ही कर रहे हैं।
0: चले बढ़िया दोस्तों, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम पायाम सुबह में। इस वक्त हम बात कर रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ियों कोच मोहम्मद हनीफ साहब से। आइए इनसे मजीद कुछ बातें करते हैं। हनीफ साहब, हमें जरा बताइए, एक कामयाब फुटबॉलर रहने के बाद जब आपने पहली बार कोचिंग के बारे में सोचा तो तब क्या विजन था आपका?
1: सर, फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने के बाद जब मैं कोचिंग में गया तो पहले मुझे बहुत आसान लगा कि कोचिंग करना बहुत आसान होगा, लेकिन यहाँ पे आपको खाली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, प्लेयर होने के टाइम आप खाली अपना सोचते हैं
0: जी।
1: कोचिंग में जब आप जाते हैं तो आपको पूरे स्क्वाड का सोचना होता है और मैनेजमेंट का भी सोचना है। तो जब मैंने वो देखा लाइसेंस के बाद कि इट्स नॉट ओनली सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमको देखना है कि मतलब टीम को कैसे रखेंगे, फिर उसी हिसाब से मैंने अपने आप को अडॉप्ट किया, नहीं इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सो आई हैव टू बी वेरी सीरियस। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ट्रेनिंग सेशन है कल, तो एक दिन पहले आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड, उसी हिसाब से आपको सेशन बनाना होता है
0: जी।
1: फिर कभी कभार होता है कि आपके सेशन पे प्लेयर नहीं आते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान बी फॉर दैट। सो पहले मेरे को बहुत आसान लगा था ये कि मैं कोचिंग में जाना है, लेकिन एक विजन लेके मेरा यही है कि मैं किसी टाइम पे मेरा क्लिक हो जाए कि मैं नेशनल इंडिया टीम को कभी कभार कोचिंग करूं, अंडर 14, अंडर 16 या अंडर 17 इंडिया टीम को कोचिंग करूं, इंशाल्लाह चांस मिलेगा।
0: अच्छा अच्छा, तो आपके नज़दीक फुटबॉल में टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है?
1: देखिए, फुटबॉल में टीम वर्क ही सब कुछ है इंपॉर्टेंट। अगर किसी गेम में ये इंपॉर्टेंट, लेकिन फुटबॉल में टीम वर्क ही सब कुछ है। जब तक हम टीम कोहिजन नहीं होगा, टीम्स को बॉन्ड नहीं होगा, ये सारा एक कोच का काम है। बाहर अगर आप यूरोप में देखिए, वहाँ पे कोच नहीं बोलते हैं फुटबॉल कोच को, वहाँ पे मैनेजर बोलते हैं। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। आपको टीम के बॉन्ड के बारे में सोचना है। देखिए, टीम में आपको 22 या 24 प्लेयर्स का स्क्वाड है
0: जी,
1: तो खाली 11 जाते हैं मैच में खेलने के लिए, तो बाकियों को आप कैसे हैंडल करोगे? दिस इज द जॉब ऑफ द कोच। खाली ऑन साइड जॉब नहीं है कोच का, ऑफ साइड फील्ड आप कैसे मैनेज कर पाओगे उन 15 प्लेयरों को जो नहीं खेले हैं,
0: जो बेंच पे बैठे हैं,
1: उनको कैसे आप ट्रेन करोगे, उनको कैसे आप मेंटली फिट रखोगे ताकि वो नेक्स्ट मैच में, उनको आज सबस्टिट्यूशंस नहीं बोलते हैं, उनको आज नाम चेंज है, उनको गेम चेंजर्स बोलते हैं
0: जी।
1: वो जब ग्राउंड में जाता है एज ए सबस्टिट्यूशन, वो वहां पे गेम चेंज करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उनको आप मेंटली फिट कैसे रखोगे वो मैटर करता है। कोच का वही जॉब होता है कि टोटल जो मेरा स्क्वाड है वो मेंटली फिट रहे, क्योंकि हर एक को लगना चाहिए कि मैं 11 का पार्ट हूं
0: जी,
1: ये इंपॉर्टेंट है
0: जी। हम जानते हैं सब, ग्राउंड पर हर पास और हर मूव के पीछे एक प्लानिंग होती है
1: जी।
0: एक कोच के तौर पर आप डिसिप्लिन और मोटिवेशन कैसे मेंटेन करते रहे?
1: देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है ये पूरा डिसिप्लिन से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हम अपडेट करते हैं व्हाट्सएप पे, हमारा 9 बजे का ट्रेनिंग सेशन है
0: जी,
1: तो ऑन टाइम इज ऑलवेज लेट, स्टार्ट वहां से ही होता है। हमारा 9 बजे प्लेयर्स तैयार होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, 90 मिनट्स का हम लोग का सेशन रहता है
0: जी।
1: तो उस वहां से ही डिसिप्लिन, हमारा डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट सेशन, 90 मिनट्स का जो सेशन है, प्लेयर घर कैसे जाएगा, रेस्ट कितना करेगा, क्या खाएगा, शाम को डिनर और सोने के बीच में कितना गैप रहेगा, उसके लिए हमारे फिजियोज हैं, ये भी डिसिप्लिन का एक पार्ट आता है
0: जी।
1: मैच के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर रहेगा, मैच डे पे कितना रेस्ट करेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेगा, कितना प्रोटीन लेगा, 7 डेज बिफोर मैच एक पीरियडाइजेशन में कितना इंटेंसिटी ऑफ लोड होगा, ये सारा डिसिप्लिन में आता है
0: जी।
1: उसके बाद ये सब कुछ निकाल के एक प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ता है। जब वो पूरा डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन में खाली ऑन टाइम नहीं आता है, वो क्या खाता है, वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, वो ट्रेनिंग कितना करता है, जिम क्या कैसे करता है। इट्स नॉट लाइक दैट, फुटबॉल प्लेयर का अलग से जिम सेशंस होते हैं, इट्स नॉट, एक बॉडी बिल्डर का अलग से होता है, फुटबॉल का अलग से होता है। स्पोर्ट्स साइंस को अलग रख के खाली फुटबॉल साइंस को इंट्रोड्यूस करना है, तब जाके एक प्लेयर इंप्रूव कर पाता है, जब वो पूरे डिसिप्लिन, ये सारा गेम डिसिप्लिन का ही है। डिसिप्लिन में लेकिन खाली टाइमिंग नहीं आता है, उसमें प्रिपरेशन फॉर द गेम आता है, उसमें इनटेक ऑफ फूड आता है, उसमें हाइड्रेशन आता है, उसमें न्यूट्रिशन आता है, उसमें इंटेंसिटी ऑफ लोड आता है
0: जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा। कहीं जाइएगा नहीं, नगमे के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।

दोस्तों आपका फिर से खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं खेलों से जुड़ी कुछ खबरों पर। आज यानी 20 मई से 25 मई के दौरान खेलों के कई बड़े कौमी और बैन अवी मुकाबले मुनद हो रहे हैं। एथलेटिक्स में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कम्पटिशन फेडरेशन कप रांची झारखंड में 22 से 25 मई के बीच मुनद होगा। वहीं कुश्ती यानी रेसलिंग में सीनियर

अंडर 15, अंडर 17 एशियन बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली में 23 से 25 मई के दौरान मुनाकिद होगी, जबकि बैन अवी सतह पर फुटबॉल में यूएफा यूरोपा लीग का फाइनल मुकाबला इस्तंबुल तुर्की में आज रात खेला जाएगा। वहीं यूएफा चैंपियंस वीमेंस लीग का फाइनल मैच 23 मई को ओस्लो नॉर्वे में खेला जाएगा। मोटर स्पोर्ट्स में फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मॉन्ट्रियल कनाडा में 22 से 24 मई के दरमियान मुनाकिद होगी, जबकि टेनिस के ग्रैंड स्लैम इवेंट्स का साल का दूसरा टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन फ्रांस के शहर पेरिस में 24 मई से शुरू हो रहा है। वहीं ख्वातीन क्रिकेट में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच विमेंस T20 सीरीज यूके में आज से 25 मई के बीच मुनाकिद होगी, और बैडमिंटन में मई 19 से शुरू हुआ मलेशियन मास्टर्स BFW वर्ल्ड टूर मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में 24 मई तक जारी रहेगा। क्रिकेट में सिलहत बांग्लादेश में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है, और IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स कोलकाता में KKR और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। तो ये थी खेलों की दुनिया से ली गई चंद खबरें।

0: अपने मेहमान से कुछ और बातें करते हैं। हनीफ साहब, हम जानते हैं कि एक मैच के दौरान एक प्लेयर पर काफ़ी प्रेशर होता है। ऐसी प्रेशर सिचुएशंस में आप खिलाड़ियों को मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाते हैं?
1: जी, ये तो बहुत अहम सवाल पूछा आपने कि प्लेयर्स को कैसे मेंटेन। देखिए, अगर मोटिवेशन जब तक कोच को नहीं होगी कि मोटिवेट कैसे करना है प्लेयरों को, हम रिकॉल करते हैं पिछले मैच जो हमने अच्छे खेले होते हैं
0: जी।
1: और प्रैक्टिस, मैच की प्रिपरेशन प्रैक्टिस से ही स्टार्ट होती है
0: जी।
1: हम प्रैक्टिस में, अगर हमने पिछला मैच हारा भी होगा, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे।
0: अच्छा।
1: हम बात करेंगे जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमने की होगी, हम उन चीज़ों से उनको मोटिवेट करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे, रिवार्ड्स करेंगे प्लेयर्स को। कुछ हम प्लेयर्स को, फॉर एग्जांपल, टीम में ही, मैच में ही अंदर टीम की तरफ से एक मैन ऑफ द मैच का इनाकात करेंगे। हम बोलेंगे जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसको मैच की तरफ से मैच बोनस मिलेगा, असिस्ट बोनस मिलेगा, नंबर ऑफ पासेस जो अच्छे खेलेंगे उसका बोनस मिलेगा। प्लेयरों को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि पिछला मैच हमने अच्छा खेला है, अगर ख़राब भी खेला होगा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो हम, वो विल रिकॉल द बेस्ट मेमोरीज, हमने अच्छा मैच जो खेला है वो उनको याद दिलाएंगे कि हमने इस टीम को हराया है, आप कैपेबल हो करने को। हम किसी लेमैन को नहीं बोल रहे हैं, हम किसी बाहर वाले प्लेयर को नहीं ला सकते, आप ही को खेलना है। हम उन्हीं को मोटिवेट करके कुछ रिवार्ड्स रख के, जैसे असिस्ट बोनस, स्कोरिंग बोनस, डिफेंडिंग बोनस, नंबर ऑफ पासिस बोनस, ये रिवार्ड्स अंदर रख के उनको मोटिवेट करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा दोस्तों, फुटबॉल सिर्फ स्पीड का नहीं, स्ट्रेटजी का भी गेम है। हनीफ साहब, मैच स्ट्रेटजी तैयार करते वक्त आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिशन कौन सा है, क्योंकि आजकल इंट्रोड्यूस किया गया है गेम एनालिसिस गेम।
0: अच्छा।
1: इसको बोलते हैं गैग। गैग में क्या होता है कि हम पहले अपोनेंट्स का गेम एनालिसिस करते हैं
0: जी।
1: अपोनेंट्स का हमने इन्फर्मिटीज़ देखी हैं, फॉर एग्जांपल उनके लुक एनालिसिस क्या है, कहाँ पे उनकी कमी है, तो उधर हम ट्रिगर करके वहाँ से ही अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपोनेंट्स का लेफ्ट विंग बैक या नंबर थ्री, जिसको आजकल के फुटबॉल में बोला जाता है, वो थोड़ा बैक पास खेलता है या उसका रिसीविंग अच्छा नहीं है, हम उधर ट्रिगर करके प्रेस करते हैं। अब रहा सवाल, कभी हमको वीडियो नहीं मिलेगा या अपोनेंट्स का मैच नहीं मिलेगा, वहाँ पर कैप्टन की और कोच की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम पहले 5-10 मिनट देखते हैं कि अपोनेंट्स कैसे खेलते हैं, 5 मिनट रीड करके फिर अपनी जो स्ट्रेटजी होती है, अपनी जो फॉर्मेशन होती है, उसी हिसाब से सेट करके, कैप्टन को इन्फॉर्म करके, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी लगा देते हैं मैच में।
0: अच्छा हनीफ साहब, एक टीम को लीड करना आसान नहीं होता, एक अच्छे कैप्टन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए?
1: देखिए, एक अच्छा टीम बनाने के लिए एक अच्छा कैप्टन होना चाहिए, और अच्छा कैप्टन, कैप्टन में और कोच में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जब तक कैप्टन और कोच में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, तब तक टीम नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑफसाइड फील्ड भी मैटर करता है और इनसाइड फील्ड भी मैटर करता है। ऑफसाइड फील्ड मैटर करता है कि, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आउट ऑफ 24 प्लेयर्स हमको खाली 11 प्लेयर खिलाने हैं
0: जी।
1: तो ये कैप्टन का भी रोल रहता है कि बाकी 16 प्लेयर मोटिवेट कैसे रखेंगे हम। कैप्टन को अंदर पता हो ट्रेनिंग सेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है, उनका जो कोऑर्डिनेशन कोच के साथ रहता है उसी हिसाब से फिर हम उनको मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं। और इनसाइड फील्ड क्या होता है कि अपोनेंट टीम अगर कभी कभार फॉर्मेशन अपना चेंज कर देती है, हमने उनके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल 3-5-2 या 5-3-2 का फॉर्मेशन लगाया, वो अंदर फॉर्मेशन चेंज करती हैं, हम कैप्टन को इन्फॉर्म करते, आजकल कैप्टन को नहीं करते, आजकल यूनिट्स के लीडर होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स, डिफेंस यूनिट, मिड यूनिट, अटैकिंग यूनिट। हम कैप्टन को इन्फॉर्म करके अपना फॉर्मेशन उसी हिसाब से चेंज करते हैं। कैप्टन और कोच का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एक अच्छा टीम बनाने के लिए।
0: अच्छा अच्छा दोस्तों, ये मज़ेदार गुफ्तगू जारी है, आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सी गज़ल।

0: एक बार फिर से आप सबका प्रोग्राम पयाम सुबह में खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं वादी के एक तजुर्बाकार खिलाड़ी और कोच जनाब मोहम्मद हनीफ साहब से। हनीफ साहब, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तकरीबन 4-5 महीने सर्दियों का मौसम रहता है,
1: जी
0: क्या आपको लगता है इससे हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर कोई बुरा असर पड़ता है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये तो ज़रूरी है कि सर्दियों में आप -2, -3, -1 में फ़ुटबॉल नहीं खेल पाएंगे।
0: जी
1: तो ये खाली कश्मीर नहीं है, देखिए आप बाहर की बात करें तो रशिया, जैसे आप साइबेरिया वगैरह इनकी बात करें तो -32 चला जाता है, लेकिन फ़ुटबॉल बंद नहीं होता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप बात करें वहाँ के इंडोर स्टेडियम्स की, वहाँ पे उसके बाद जो फैसिलिटी प्लेयर्स को मिलती हैं, जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट मिलता है प्लेयर को, फर्मेंटेशन वगैरह, तो यहाँ पे जो हम लैग करते हैं, यहाँ पे 4 महीने फ़ुटबॉल बंद नहीं रहता। हमको कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम जम्मू जाते खेलने के लिए। हाँ, जम्मू जाएंगे, जो वहाँ पे टूर्नामेंट्स होंगे विंटर्स में, हम वहाँ पे जाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, सीधी सी बात है।

0: एक ही यूटी है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ एक ही या दो इंडोर स्टेडियम्स फुटबॉल के बना दिए जाए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 4 महीना प्लेयर घर पे बैठेगा।
1: जी
0: हम ये ज़रूरी सफ़र करता है हमारा प्लेयर। देखिए, हम मैं भी एक क्लब का यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट हेड हूँ, कश्मीर एलिगेंट फुटबॉल क्लब का। विंटर आते हैं तो 4-5 महीने 6 महीने फुटबॉल बंद रहता है। अगर यहाँ पे इंडोर स्टेडियम्स होते तो मेरी रिक्वेस्ट यही है यूटी गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से, स्पोर्ट्स काउंसिल से, इससे इसमें थोड़ा इंटरवीन करके अगर कुछ हो सकता है इंडोर स्टेडियम्स का, या टर्फिज ही बनाए, एक दो टर्फिज ही बनाए, जिस क्योंकि बर्फ़ से तो टर्फ ख़राब नहीं रहती है, तो इंडोर की अगर इंडोर स्टेडियम नहीं बना सकते हैं, कुछ 2-3 टर्फ्स बनाई जिस पे प्लेयर खेल सकते हैं। तो विंटर तो बाहर भी लेते हैं, लेकिन फुटबॉल कश्मीर के बगैर किसी जगह बंद नहीं होता।
1: अच्छा, हनीफ साहब, आपके करियर का कोई ऐसा मैच है जो आज भी याद करके इमोशंस फ्रेश हो जाती हैं?
0: जी, मेरे कैरियर में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फुटबॉल स्टेट फुटबॉल में थोड़ा खेला हूँ। तो केरला में हम लोग जीवी राजा फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो
1: जी
0: उसका फाइनल मुझे पूरा याद है, अभी मेरी आंखों के सामने है। वो टाई ब्रेकर्स में जीते थे, तो वो मुझे अभी भी याद आ रहा है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर से, शायद पूरा याद नहीं है, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर से ही हमने फाइनल जीता था। शाम को 8 बजे शायद मैच था,
1: जी
0: अभी मेरी आंखों के सामने ही है, वो मुझे फ्रेश मेमोरी है। एक और मेमोरी है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग के साथ हमने मैच खेला था आसाम में। कुछ मेमोरीज हैं, अब परफेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो मुझे याद आ रहा था जीवी राजा गोल्ड कप का फाइनल था और LG कप दिल्ली कप का फाइनल, मुझे अभी फ्रेश मेमोरीज हैं उसकी, कि वो हमने जीता था।
1: अच्छा, ये बताइए कि आज के यूथ को फुटबॉल की तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है?
0: देखिए, अभी जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक टूर्नामेंट कश्मीर चैंपियंस लीग का इनेकाद किया है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है
1: जी
0: यूथ को ड्रग से बचाने के लिए। मेरा जो पर्सनल इसमें एक रिव्यू है कि जब तक एक फैमिली घर में एक बाप उजागर ना हो जाए अपनी फैमिली को, अगर सिंगल सिंगल हैंडेडली एक फैमिली को, हम नहीं बोलेंगे कि एक तो मोबाइल है और ड्रग है, दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अभी मेंटेन करना पड़ता है हमको, स्क्रीन टाइम और ड्रग। इन चीज़ों से अगर एक बाप पहले ना उठे कि अपने बेटे को फुटबॉल की ओर, बाहर मैंने देखा है माँ बाप साथ आते हैं फुटबॉल ग्राउंड में,
1: जी
0: कितने भी एंगेजमेंट सुन के हो। यहाँ पे हम बोलते हैं हम यहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, 2 घंटा फैमिली के लिए नहीं, बच्चे के लिए 1 घंटा नहीं है, लेकिन ये मैं खुद को भी बोलता हूँ क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम है। तो हमको 1-1.5 घंटा बच्चे के लिए निकालना, उसको खुद ग्राउंड में लेके साथ आना है। अगर नहीं निकाल पाए तो शाम को 1 घंटा जिम ले जाओ, या सुबह 1 घंटा निकाल सकते हैं। पहले हमको एक इंडिविजुअल लेवल पे एक फैमिली हेड होने के नाते अपनी फैमिली को देखना है, तब जाके कलेक्टिवली सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: बहुत खूब। अच्छा, आपको क्या लगता है लोकल लेवल पे फुटबॉल को और सपोर्ट मिलना चाहिए?
0: लोकल लेवल पे फुटबॉल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर अगर हम अभी का फुटबॉल देखें तो नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में हम, जैसे क्रिकेट में हमने रणजी ट्रॉफी जीती,
1: जी
0: तो उसकी वजह से मैं भी देखता हूँ, मेरा बेटे बेटा भी अभी कहता है कि मैं विराट कोहली बनूंगा।
1: अच्छा
0: तो अगर हम फुटबॉल की बात करें, पहला स्ट्रेस हमको करना है कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कोच हैं, सी लाइसेंस बी लाइसेंस सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन अंडर 13 अंडर 14 किड्स के साथ हमको काम करना है, खुद भी अच्छा कोच बनने के लिए, उनको अच्छा प्लेयर बनाने के लिए। अगर
1: बिल्कुल
0: हमको खुद भी अच्छा कोच बनना है, क्योंकि अभी कोचिंग में गाइडेड डिस्कवरी और रेसिपोकल मेथड इन्वॉल्व हो गए हैं, उसमें क्या है, प्लेयर्स अपने आप से सीखते हैं, कोच और प्लेयर्स आपस में क्वेश्चन आंसर करके सीखते हैं, ये एक कोचिंग में नई फिलॉसफी है।
1: जी
0: तो अंडर 13 और अंडर 14 16 बच्चों को जब तक हम कोचिंग न करें, हमारी कोचिंग ही अधूरी है।
1: बिल्कुल
0: ये मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, आई एम पॉइंटिंग फिंगर टुवर्ड्स मी फर्स्ट। हमको बच्चों को कोचिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम इंडिया का मिशन देखें, हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मिशन, दैट इज 2047 विजन, हमको 2047 में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलना है।
1: जी
0: उसके लिए जैसे बाहर मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी, सुदेवा फुटबॉल एकेडमी, रिलायंस फुटबॉल एकेडमी, लिटिल चैंप्स मुंबई, डेक्कन हैदराबाद, वैसे जो वहाँ पे काम करते हैं, चलो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो रेजिडेंशियल एकेडमी नहीं है, लेकिन हम अपने मोहल्ले में हमारे पास ग्राउंड्स हैं, अपने इट्स नॉट नेसेसरी विल बी हैविंग टर्फ, ऐसा टर्फ तो इस करो ताकि मजा,
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: पास टर्फ होगी तो हम टर्फ पे खिलाएंगे, हमारे पास ग्राउंड्स हैं। अगर 4-5-6 महीने हम बच्चों को ट्रेन करेंगे वहाँ पे अपने अपने वैसिनिटी में, हम लोग आराम से इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं।
1: अच्छा दोस्तों, ये मज़ेदार गुफ्तगू जारी है, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

अपनी महाभारत, कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए, इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है।

0: वेलकम बैक हनीफ साहब, ये बताइए कोचिंग ने आपकी पर्सनैलिटी में क्या तब्दीली लाई?
1: जी, फुटबॉल से रिटायर होने के बाद जब मैं कोचिंग में चला गया तो
0: जी
1: मुझे लगता है कि इसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन में सब कुछ आता है, मतलब आपका सेशन प्रिपरेशन, आपका प्लान, आपकी पीरियडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, एक मंथ का अगर टीम का कैंप है तो हाउ आई एम पीरियडाइजिंग दैट थिंग, बुक पुश उसको कराना, मैं कैसे करता हूँ पीरियडाइज की, प्लेयर को कितना लोड लगना चाहिए, इंजर्ड प्लेयर को कितना लोड लगना चाहिए, मेरे जो डिफेंड लाइन है, मिडफील्ड लाइन, इसमें कोचिंग ने मेरी मेरी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाला डिसिप्लिन को लेके। मतलब मुझे अगर ग्राउंड में 9 बजे जाना है, 8 बजे मेरा सेशन रेडी होना चाहिए, 8:30 बजे ग्राउंड में ऑर्गेनाइज करके होना चाहिए सब कुछ। 9 बजे प्लेयर आएंगे या 9:45 बजे प्लेयर आएंगे, उससे पहले ही वो मैसेज जाती है प्लेयर्स को कि कोच ऑलरेडी रेडी है, उनको सीधे ही पता चलता है कि आज क्या करना है। वो जो चीज़ है उसने मेरी लाइफ में बहुत मेरी लाइफ को बहुत डिसिप्लिनड बनाया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब मुझे किसी जगह जाना होता है, मैं टाइम से पहले आधा घंटा पहले ही पहुँच जाता हूँ।
0: जी जी,
1: तो ये चीज़ है।
0: तो आपके नज़दीक फुटबॉल सिर्फ एक गेम है या लाइफ लेसन भी?
1: देखिए, मैं अभी 40 साल का हूँ, 41 है मेरी एज। मैं 12 साल से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ, हर एक फॉर्मेट खेला है, जो भी अंडर 14, 16, तो तब से लेके अभी तक मुझे ये फुटबॉल मेरे इटरनल है। मतलब मैं जॉब करता हूँ तो जॉब से मैं सेटिस्फाई कभी नहीं हुआ कि मैं ये सैलरी लेता हूँ, वो सैलरी लेता हूँ। जब तक मैं फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन बच्चों को ना सिखाऊँ, महीने में 10 सेशन 15 सेशन नहीं करूँ, लोगों को नहीं सिखाऊँ फुटबॉल, तब तक मैं इटरनली खुश नहीं होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ है, मतलब कुछ कमी है मेरे में
0: जी।
1: जो, वरना मैं मेरी लाइफ अगर जॉब के हिसाब जाए तो मेरी लाइफ सेट है, लेकिन मैं फिर भी सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, उधर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का काम भी अच्छे से करता हूँ। तो फुटबॉल मेरे लिए एक लाइफ लेसन है, डिसिप्लिन रहने के लिए, और अपनी फैमिली को भी, अपने बच्चों को भी, और दूसरी

0: के बच्चों को भी सिखाने के लिए कि आप चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, आप किसी भी गेम से जुड़े रहो। ये स्पोर्ट्स है ना, ये इंसान को इंसान बना के रख देती है।
1: अच्छा, अगर आप फुटबॉल की तरफ रागिब नहीं होते तो क्या कर रहे होते?
0: देखिए, मैं नॉन मेडिकल में एक अच्छा खासा स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका होता मैं।
1: दोस्तों सुनते हैं एक और नगमा।

0: सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटेन स्क्रीन टाइम और ड्रग की ओर ना जाए, चाहे क्रिकेट में जाओ किसी और, बहुत सी गेम्स हैं यहाँ पे, फुटबॉल है उसमें चले जाओ, लेकिन ड्रग से बचे रहो और स्क्रीन टाइम से मेंटेन रखो अपने आप को।
1: बहुत खूब हनीफ साहब, आप हमारे यहाँ आए और खुल के हमारे साथ बातें की, आपका शुक्रिया।
0: शुक्रिया, मेहरबानी।
1: उम्मीद करते हैं आपके ट्रेन किए हुए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के लिए खेलेंगे और यूटी का नाम रोशन करेंगे।
0: शुक्रिया सर, मेहरबानी, शुक्रिया।

आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन समीन आप समाप्त कर रहे थे पैम सो का लाइव शो। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इशो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन जाता अठाशरिया अठाक मीटर तो एफ एम अकत्रशरिया पांच मेगाट सनपेट। दोस्तों बोलियो छाकर तरो बोजो पेछो अब्दुल रशीद हाफिज तो सतिन आवाज मज कलामी रमान डार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपो

0: पाउलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर, जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional level.

समीन, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मिड व्यू 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए खबरें सुनते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और वहां के सदर सर्गियो मैटरेला के साथ भारत इटली शराकतदारी और बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। इन मुलाकातों के दौरान 2025-29 के मुश्तरक स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि वजीर आजम रोम के सरकारी दौरे पर कल रात इटली पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 100 रोजा नशा मुक्त अभियान के तहत सिविल और पुलिस इंतजामिया के अहतमाम से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस बिद्दत से नौजवानों को छुटकारा दिलाने के लिए बेदारी और बाजाबतकारी के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं, जबकि ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाईयों में तेजी लाई गई है। इंतजामिया ने मनुष्यात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का तहिया कर रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
0: मनुष्यात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करना कपवाड़ा में गुलाम मुस्तफा मुगल नामी ड्रग स्मगलर की 4 कनाल 8 मरला जमीन अटैच की है। अवंतीपोरा में पुलिस के अहतमाम से मनुष्यात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। बांडीपोरा में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह कर दिया। पुणे की एक मारूफ तंजीम सरहद के अहतमाम से कल SKICC श्रीनगर में लल दत्त अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की 4 मुमताज खवातीन नामवर शायरा बिमला रैना, साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता दानिश्वर प्रोफेसर नसीम शिफाई, मुसनिफा और राजभाषा की माहिर डॉक्टर सकीना अख्तर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्रावी को उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ में लल दत्त अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की एक मारूफ माहिर तालीम कलमकार और तर्जमा निगार प्रोफेसर नीरजा मट्टू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के नामवर तिबी माहरीन और कई तिबी इदारों के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग के दौरान

0: प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, Ahn Kyu-bak, in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation, with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defence College of India, the Korea National Defence University, and the UN Peacekeeping Corporation. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat.

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और

0: विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
1: एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी,
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
6: I am fine, ma'am.
7: How are you, ma'am?
3: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
8: pets are so lovely.
3: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: समीना प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए कुछ फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से कुमार सानू।

आप आकाशवाणी का सही नगर स्टेशन सुन रहे हैं और अभी आप हमारे यहाँ से फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। चलिए एक और नगमा सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में।

0: समीन आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आइए आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनते हैं।
1: आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं आसिया मेमुना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फ़रोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मिलोनी से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी और जॉर्जिया मिलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकतदारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दुमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वसी हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वज़ीर आज़म मिलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलेजियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फ़रोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी और सदर सर्गियो मटरेला के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फ़रोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के दौरान भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फ़रोग देने, खास तौर से भारत मगरबी एशिया यूरोप इक्तिसादी कॉरिडोर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे 2025 से 2029 तक का भी जायजा लिया जाएगा। जनाब मोदी खुराक और ज़राअत की तंजीम के सदर दफ्तर का भी दौरा करेंगे और कसीर जहती निज़ाम और पूरी दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अहद को मजीद मुस्तहकम करेंगे। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़िश्ता बरसों में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खुसूसी कलीदी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं, जो जमहूरियत और मुस्तकबिल के मुश्तरका नजरिए पर मबनी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का जिक्र किया।

0: है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आलमी निज़ाम में नुमायाँ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, भारत इटली शराकत दारी में आला तरीन सियासी और इदारा जाती सतहों पर मुसलसल राबतों से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस शराकत दारी को नई समत मिल रही है, जिसे इक्तिसादी इनफरादियत, समाजी इख्तरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुरानी तहजीब से तहरीक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने इस मजमून में कहा है कि उनके इश्तराक से इस मुश्तरका समझ की अक्कासी होती है कि 21वीं सदी में खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार मुल्कों की इख्तरा, तवानाई के बंदोबस्त, मुंतकली और इकतदार आला को मुस्कम बनाने की सलाहियत पर होगा। दो कौमी रहनुमाओं में शाये मजमून में दोनों रहनुमाओं ने नए अहदाफ की हुसूलियाबी और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसअत देने के अपने अहद का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का मकसद इटली की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की महारत और भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की, इंजीनियरिंग की सलाहियत, इख्तरा के इको निज़ाम और कारोबारी मजबूती के दरमियान मजीद तालमेल पैदा करना है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अंदरून मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल से दागे गए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल की तैयारी की कामयाब फाइनल आजमाइश की, जो मुल्क के दिफाई शोबे के लिए एक अहम हुसूलियाबी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यह आजमाइश आंध्र प्रदेश में कुरनूल के नज़दीक DRDO के टेस्ट रेंज में फिजा से ज़मीन पर और फिजा से फिजा में दोनों तरीकों से की गई। आजमाइश के दौरान मिज़ाइल निज़ाम को एक जदीद मजबूत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए अमल में लाया गया। इन आजमाइशों से जंग की मुख्तलिफ सूरत हाल में मिज़ाइल के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और मोतबरियत का कामयाब मुजाहरा हुआ। इस मिज़ाइल को रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद में DRDO की दीगर लेबोरेटरियों के साथ इश्तराक में तैयार किया गया है। मुकम्मल तौर पर अंदरून मुल्क तैयार किए गए इस मिज़ाइल से भारत के घरेलू दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत का इजहार होता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें आने वाली मर्दमशुमारी के एक हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार की पॉलिसी के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमांदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है, ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। बेंच ने कहा कि इस तरह के आदादोशुमार इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है और उसने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आन यू बैक्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफा, दिफाई सनद और अहम नौयत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम किए जाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी में इश्तराक के तई अहदबंद हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि ये मीटिंग इंतहाई सूदमंद रही और भारत और जनूबी कोरिया ने दिफाई साइबर इश्तराक को फरोग देने के बारे में समझौतों का तबादला किया। मफाहमत के इकरारनामों का तबादला भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज, कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अकवामे मुत्तहिदा कयाम अमन इश्तराक के दरमियान किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में बातचीत की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और ईरान, यूक्रेन और बैन अल-अक़वामी तिजारत समेत अहम आलमी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि इस बातचीत से चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और अक़वामे मुत्तहिदा, SCO और ब्रिक्स जैसे फोरमों के जरिए इश्तराक में इजाफा होगा। पंजाब पुलिस ने दुबई में कायम मनुष्यात की स्मगलिंग के एक बैन अल-अक़वामी गिरोह का पता लगाया है, जो अबूजहबी से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था और साथ ही साथ रियासत पंजाब की सरहदी हिस्से और कौमी राजधानी दिल्ली में मनुष्यात पहुंचा रहा था। पंजाब और हरियाणा में शदीद गर्मी जारी है और दोनों रियासतों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह रहा है। मौसमियात के महकमे ने पहले ही खित्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वाकई मौसमियात के महकमे के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा और आइंदा 3 से 4 दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। राजस्थान के ज्यादातर जिले इस वक्त शदीद गर्मी की गिरफ्त में हैं। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के सबब आज दो

0: के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने इस हफ्ते के दौरान मुल्क के शिमाल, मगरबी और वसी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 4 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान आसाम, मेघालय, केरलम, माहे, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक शदीद बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 93 रन की इनिंग्स की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फरोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकत दारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिजाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दुमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वसी हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will focus on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels, They said the partnership is acquiring

0: ओ ठगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना। अब राज लुटे या ताज लुटे, जब लागे तो से नैना।
1: रामा दुश्मन है।

0: मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ।
1: अरे हाँ।

समीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं। अगला नगमा सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, उदित नारायण और अलगया याग्निक की आवाज़ों में।

समीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। जो आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन मीडियम व्यूज आता हट आचार्य अठक मीटर तो एफ एम अखत्र आचार्य पांच मेगाट सनपेट समीन जबचत तरह मिनट सब दे वलि उछा कर तरह बोझो वनकस बोझो अब्दुल रशीद हफिज तो सत्यन हिज आवाज मज कलामी अहद सरगर्म।

जय हिंद फौजी भाइयों, आज का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। प्रोग्राम में हमने आपके लिए कुछ खूबसूरत से नगमे रखे हैं और साथ ही साथ आपसे होंगी कुछ प्यारी सी बातें भी। फिलहाल आगाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए है।

आगाज में आपने हिमेश रेशमिया और आकृति कक्कर की आवाज़ों में ये नगमा सुना। दोस्तों, यादें तो यादें होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन कोई शख्स जहन में इस तरह बस जाता है कि इंसान किसी भी खूबसूरत शय को जब भी देखता है तो होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आंखों ने किसी खूबसूरत शय को देखा होता है लेकिन जहन में कोई और सूरत चमकने लगती है। और शायद इस तरह इंसान उस तस्वीर से कभी बाहर नहीं निकल पाता। जब इंसान घर से बाहर, घर से दूर रहता है तो उस तस्वीर को अपने दिल में और अपनी आंखों में बसाए रखना, चाहे वो आपका कोई भी अपना हो, ये एक मुख्तलिफ और एक अलग तरह का तजुर्बा होता है।

दोस्तों, वह महबूब की मेहंदी फिल्म से आपने यह नगमा सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। दूरी रिश्तों को ख़त्म तो नहीं करती है, लेकिन एक इंसान के जहन में बहुत सारे शकूक पैदा करती हैं। एक शख्स याद भी करता है तो ये सोचकर कि क्या वो भी मुझे याद कर रहा है, और भूल जाने की कोशिश भी कभी इस नीयत से होती है कि देखूं तो वो मुझे याद करेगा या नहीं। कहीं ना कहीं ये कश्मकश होती है। और अगर एक आम शख्स इस कश्मकश से गुजर जाए, या फिर अगर एक आम शख्स को इस कश्मकश का अंदाज़ा हो जाए, तो उसके दिल में फौजी भाइयों के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी।

आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीटर व्यू 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। प्रोग्राम जारी है फौजी भाइयों के लिए। दोस्तों, देखा जाए तो हर एहसास को लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं होता, बल्कि अगर कहा जाए तो मुमकिन ही नहीं होता। कहीं ना कहीं रिश्ते कागज़ और कलम के मोहताज नहीं होते, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब जो वो महसूस कर रहा होता है उसको बयां करने के लिए अल्फाज का इंतखाब सख्त इम्तहान बन जाता है, और अक्सर व बेशतर उस वक्त इंसान ज़ुबान से अपने अल्फाज अदा करने से बेहतर अपने दिल के एहसास को कलम के ज़रिए कागज़ पे उतारने को तरजीह देता है।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीटर भी 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों कहते हैं जाने वाले आसानी से चले जाते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके जाने से किसी की ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है। लेकिन जाना भी सबके लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग जाते तो हैं लेकिन अपनी रूह आपके साथ ही छोड़ जाते हैं। दर्द होता तो है पर छुपाना पड़ता है, आंखें नम होती तो हैं लेकिन आंसुओं को बाहर नहीं आने देते, क्योंकि उनको पता होता है कि यह अज़ियत दो तरफा है। और शायद इस तजुर्बे का अंदाज़ा फौजी भाइयों से ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकता।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना, पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्ड

0: ना रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जम्मू एंड कश्मीर।

जी दोस्तों, धर्मवीर फिल्म से आपने ये नगमा सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और कहीं ना कहीं कभी किसी शख्स के जाने से अज़ियत बहुत होती है, क्योंकि कभी कभार आपकी खुशियाँ उस शख्स के साथ वाबस्ता होती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की अपनी खुशियाँ इतनी मानी नहीं रखती जितनी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट अहम हो जाती है। अपनों की खुशियाँ अपनी खुशियों से ख़ास हो जाती है, और शायद रिश्तों को यह एहसास बहुत खूबसूरत बनाता है। रिश्तों को उस तरह से निभाना भी चाहिए, और रिश्तों में एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना भी लाजिम बनता है। दूसरों को खुश होकर, जब आप दूसरों को खुश देखते हैं तो खुश होना सीखिए, तभी आप देखेंगे कि आपके होंठों पे जो मुस्कुराहट है वो हकीकी होगी, ना कि जाली।

दोस्तों, आपकी दीवाने फिल्म से आपने ये नगमा सुना, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आपने ट्यून इन किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप फौजी भाइयों के लिए।

फौजी भाई, आज के प्रोग्राम में इतना ही। लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीटर व्यू 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 3:50 होने वाले हैं। आइए खबरें सुनते हैं।

0: एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के मुस्तकबल को तबाह कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में नशा मुक्त भारत अभियान उम्मीद की एक किरण है। वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी को मिलकर नौजवानों की रहनुमाई करनी होगी। मोहब्बत, अच्छी तरबियत और शऊर के जरिए ही हम एक महफूज, सेहतमंद और नशे से पाक माशरा बना सकते।
1: वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमवानी ने आज जम्मू में नए लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने वहां तामीर हो रहे मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील यकीनी बनाए ताकि ऐवान के कामकाज में आसानी पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को तमाम तर जदीद सहूलियात से लैस किया जाना चाहिए। बाद में मुशीर मौसूफ ने कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पुणे की एक मारूफ तंजीम सरहद के एहतमाम से SKICC श्रीनगर में ललदत अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की चार मुमताज खवातीन नामवर शायरा बिमला रैना, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता दानिश्वर प्रोफेसर नसीम शिफाई, मुसन्निफा और राजभाषा की माहिर डॉक्टर सकीना अख्तर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरक्षा अंद्राबी को उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में ललदद अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की एक मारूफ माहिर तालीम कलमकार और तर्जमा निगार प्रोफेसर नीरजा मुट्टू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया। बाद में डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा,
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घरों में ललित का नाम हर एक औरत से मंसूब किया जाता है, वो नाम जो उस लेडी के लिए लिया जाता है कि वाकई इच्छा ललित, तो उस अवार्ड से नवाजा जाना और वो लेना मेरे लिए बाइस फख्र है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस तंजीम ने मुझे चुना और मेरे काम की सराहना यहाँ पे हुई, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस अवार्ड से मुझे नवाजा।
1: जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने और लोगों को आला मेयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताव चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो MSME हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो, रिक्वायरमेंट जो लोगों को होता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम पे लेंडिंग प्रोवाइड करता है जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम साल में करीब करीब 60-65 हज़ार कैंप्स करते हैं जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनकी कमजोर है, रिमोट एरियाज में जा करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। और हम एक और काम जम्मू एंड कश्मीर बैंक करती है, वो अनबैंक्ड जो एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, हर जगह पे या तो ब्रेक एंड मोटर ब्रांच या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो खिदमत सेंटर्स कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा कि इस कोर्स में 30 नशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान 1 जून को लिया जाएगा।
4: IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315।
1: जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 4 साला अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साला इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
5: मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें JKAdmissions.in और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27th, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार, एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो

0: उसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
1: जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है और जम्मू में दिन का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। जम्मू में गर्मी की लौ से बचने के लिए आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सहपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज़।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम व्यू 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4 बज चुके हैं, पेश है पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम केन के मैं आ तुसदा मेजबान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया क्वाखता। उम्मीद है तुसी ठीक ठाक होसो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुनदे होसो। सामीन इकराम अज 20 मई है ते इस दिन दी सब तो बड़ी खसूसियत ए है जे इस दिन शहद दियां मक्खियां दा आलमी दिन मनाया जुलदा है। अकवामे मुत्तहिदा दी जनरल असेंबली सुन इस दिन को माहौलियाती निजाम वास्ते खोरियां और बाकी जिरगा करने वाले कीड़ियां दी अहमियत को उजागर करने वास्ते नामजद कीता है। ए दिन मखोरियां ते बाकी कीड़ियां दी हिफाजत और इन दी माहौलियाती अहमियत उतैलो सटने वास्ते मनाया जुलदा है। 20 मई 1734 ईस्वी को शहद दियां मक्खियां को पालने दे अलमबरदार अंतून जानिया पैदा होया से। इस दिन को मनाने दा मकसद मखोरियां को पालना ते उना कोलो माखी हासिल करना है और इन दे जरिए फसलां दी पैदावार भी बढ़दी है। ए एक मुनाफा बख्श कारोबार है, इस नाल रोजगार दे मौके मिलदे न। सामीन आओ प्रोग्राम को अगे बदेने होया आरफ नाज कोलो सुनदे हां ए गीत।

जी सामीन, अरफनाज पेश कर रहा से गीत। ते सामीन, जम्मू कश्मीर विच नशे दे खात्मे वास्ते हुकूमती तदबीर तेज हो गई दी है। इस मुहिम विच कई महकमे और इदारे मिलकर इस दे खिलाफ एक हिकमते अमली उतै कम कर देन, जिसका मकसद अवाम विच बेदारी उजागर करनी है और नशे दे आदि लोकां दी बहाली वास्ते मदद फराम करना है। ये सरगर्मियां नशा मुक्त जे एंड के अभियान दे तहत जारी हैं। ये 100 दिनां दी मुहिम है। इस दी शुरुआत 11 अप्रैल 2026 को हुई सी। इस दे तहत मुख्तलफ सरगर्मियां जुलाई 2026 तक जारी रहे सन। 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर को मंशियात थी पाक करने दी ए एक अहम कोशिश है। तसामीन, प्रोग्राम जारी है, आओ अगे मोहम्मद यूनुस लोलाबी दी आवाज़ बिच सुन दें ए गीत।

जी सामीन, मोहम्मद यूनुस लोलाबी पेश कर रहा से गीत। ते सामीन, नशा मुक्त अभियान दे तहत इलमी इदारियां, पंचायतां और शहरी मकामी इदारियां बिच बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद कीते जुल रहे हैं। नशे दे आदि लोकां वास्ते खसूसी कौंसलर्स दी ट्रेनिंग और इलाज दी सहूलत को बेहतर बनाया जुलदा है। मनशियात दा कारोबार करने वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती जुल रही है। तिबी माहिरीन सुन नशे दे आदि लोकां दे बारे बिच दस्या दे कि सेहत और समाजी मसले इस नाल सामने आ रहे हैं। इस मुहिम दा बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर दे जवानां वास्ते मुस्तकबल को बचाना है और एक सेहतमंद माशरा कायम करना है। सामीन, आओ प्रोग्राम दे आखर ते करणजीत सिंह दी आवाज़ बिच सुनदे हां ए गीत।

0: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। शाम के 5 बज चुके हैं। समाप्त कीजिए आज का गोजरी प्रोग्राम।

आकाशवाणी श्रीनगर ते गोजरी प्रोग्राम सुनने की खिदमत मां थारा मेज़बान डॉक्टर अल्ताफ़ निज़ामी की तरफों खुलूस ते मोहब्बत भरियो अस्सलाम अलैकुम। सजनो, आकाशवाणी का 90 साल पूरा हो गया ते यो सफ़र बड़ो तवील भी रहो, बड़ो खुशगवार भी रहो, ते बड़ा सारा तजर्बात, बड़ा सारा कई नवा तजर्बा जड़ा इस सफ़र के बिच रहा। ते रेडियो ते सामीन के बिष्कार जो जड़ो सफ़र रहो 90 साल को, इसने मुझ प्यार भी देखो, मुझ आजमाइश भी देखी, ते कई दुश्वार मरहला भी देखा। रेडियो इतलात ते मालूमात का संग अहम मसाइल पर आवाम की रहनुमाई भी करे। रेडियो अज भी अपना सामीन वास्ते तालीम ते तफरी पर मबनी मयारी प्रोग्राम पेश कर रहे है। अज भी लोग आलमी मुकाबला की कमेंट्री रेडियो पर अगर मिले तो सुनो मुझ पसंद करें। आज भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ते टेलीविजन की इतनी तरक्की के बावजूद रेडियो अपनी अहमियत ना कायम ते दायम रखा हुआ है। तो सजनों, बाकी गल यह है कि रेडियो का प्रोग्राम अपना मुल्क की तरक्की, इसकी अमन, इसकी साख्त, इसकी जबाना ते इसकी शनाख्त ना बरकरार रखण में जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें आकाशवाणी का प्रोग्राम का कोई जवाब नहीं। आकाशवाणी ने इस 90 साल का सफर में जित मुल्क ना आज़ाद कराण में अपनो किरदार पेश कियो, फिर उत्ते ही मुल्क में आपसी इतिहाद यकजहती ना बरकरार रखण में इतका लोगों का मिजाज ना मिजाज के मुताबिक प्रोग्राम पेश कर गए, उनकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक तफरीही, तदरीसी, तरबियती ते जड़ा ना यानी कि खबरों पर मबनी प्रोग्राम पेश कर गए, उसने रंगारंगी को मुजाहरो कियो है। ते इस श्रीनगर का गोजरी प्रोग्राम ने हमेशा गुजर कौम की जबान, उनका कल्चर, तमद्दन, सकाफत ते अदब ना तरजीह दीती है। ते गोजरी प्रोग्राम में सामीन की फोना पर मबनी प्रोग्राम, चिट्ठियाँ के जरिए ते ईमेल या मैसेज के जरिए जो उनको प्रोग्राम संग जुड़नू है, यो वाकई इस प्रोग्राम की एक कामयाबी को बड़ो सबूत है। ते सजनों, अज थारे ना करता चला इस खूबसूरत मौका पर सबते पहला एक सूफियाना कलाम। यो कलाम है हजरत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैहि को, ते आवाज़ है जगजीत सिंह की।

रेडियो के नाल सुनने वाला को प्यार हमेशा बेइंतहा रहो है। तो स्टूडियो दियों आवाज़ है जरिए है जान वाली आवाज़ दूर किधर सजना ना अपने नाल जोड़े तो उन्होंने तफरी तो मालूमती प्रोग्राम सुनावे। सामीन कुछ प्रोग्राम ना हद तो ज़्यादा प्यार करें तो सैकड़ा मसरूफियात के बावजूद रेडियो प्रोग्राम वास्ते वक्त कढ़ी तो दिन ब दिन बिलाशुबा रेडियो की शोहरत ते मकबूलियत आम होती जा रही है और रेडियो अपनी तरक्की का उरूज पर है। हम अपनी पूरी टीम प्रोग्राम का पेशकार ते अपना मुआवनीन की तरफों आकाशवाणी का इस 90 साल का सफर ना मुकम्मल होने पर हम तम सारा ना मुबारकबाद पेश करा। अगे थारी खिदमत में पेश कर दें एक और गीत या आवाज़ है नरिंदर बीबा की आवाज़ में

जी सजनो, नरेंद्र बीबा की आवाज में तुम सुन रहा था यो गीत। ते अगे मारा को एक फीचर है नूरी छम, तहरीर ते पेशकश है हसन परवाज चौधरी की। आओ सुन लिया इस तारीखी मुकाम का बारा में एक खूबसूरत जो फीचर जो के कई मरतबा इससे पहला भी पेश किया जा चुके है। थारी फिर फरमाइशों के मुताबिक जो कि मौसम को सुनो है तय पीर की गली पर इस कड़ी इस रोड के ऊपर एक लैंड लगी हुई है सियाहा की उरा पारा जान लड़ांगी। तो फिर मैंने लगे कि हम साझा हो गए सुन लिया नूरी छम फीचर।

पीर पंजाल की बुक्कल में बसी सुरन वादी पुंछ की धरती पर अपनी नमेकली थाई रखे। नू ते पुंछ की पूरी धरती कुदरती हुसन ते अपना स्नैप की वजह तू मशहूर है, वर दरिया सुरन के कंडे आबाद वादी अपनों बदल नहीं रखती। चढ़ता दीगी रिस्मा नाल या नवी नवेली लाड़ी अरुण सजी दजी भी सही लगे। इत को कुदरती हुसन सतरंगो मौसम दिलकश नजारा साफ शफाफ ताजा मिठा पानी का चश्मा खूबसूरत आबशार रंग बिरंगा फूल नीला सबज तला इसका हुसन न चार चंद लावे। इतगी सरसबज मार्ग रंग बिरंगा फूलों नाल दूरों इसरा लगी।

मुगल बादशाह कश्मीर की खूबसूरत मनमोहनी धरती नाल बेहद ऊंस रखे था, पर शहनशाह जहांगीर का इश्को मोहब्बत गुजर चो सब तो उत्तम थो। जहांगीर पहली बार 1599 ईस्वी में अपना बाप शहनशाह अकबर नाल कश्मीर आयो ते इतका कुदरती हुसन ते फितरत की रंगीनियां गो शैदाई हो गयो। वो इतका बर्फपोश पहाड़ा ते नीली सावी मरगा का हुसन ना कदे भी नहीं पला सकी।

गागो एक लम्बो सिलसिलो है जिनमा रंग बिरंगा फूल आता सिलानिया का दिल मोले मरगा मां मैसा ना छेड़ गए मटियार कई गीता गा सुरा नाल माहौल ना रोनकीलो बना गए पूरी फिजा ना अलमस्त बना दे कई अपना मिठा प्यारा बांका ना सरी मस्तान की नीली सावी मर्ग की मस्ती नाल अंग्रेजी फिजा मां याद कर कर गए अपना दिल ना पहचान का जतन करती रही।

मोतियां आरू किरतो नूरी छम बहराम गला की जगह 75 फुट की ऊंचाई वरों एक खूबसूरत त दिलकश छमर बनातो वो अपना हुसन ना फवार की शक्ल मा इसरा सरती वर खिंडावे जिसरा कहिए जे आसमान वरों सुच्चा मोतियां की सीमी सीमी बारिश हो रही है।

समय अभी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 5:50 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए गोजरी में खबरें।

0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता मक्यो।
1: ड्रग्स एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के मुस्तकबल को तबाह कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कयादत में नशा मुक्त भारत अभियान उम्मीद की एक किरण है। वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी को मिलकर नौजवानों की रहनुमाई करनी होगी। मोहब्बत, अच्छी तरबियत और शऊर के जरिए ही हम एक महफूज, सेहतमंद और नशे से पाक माशरा बना सकते।
0: ये खबरतम आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। खबरतम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी सुन सकें। वजीर आला का मशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में नोआ लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स की पेशरफ्त को जायजो लियो। उन्होंने ओ तामीर हो रहा मुख्तलिफ सेक्शंस को मायनों कियो। उन्होंने अमल आवरी एजेंसियां पर जोर दितो कि वे इस प्रोजेक्ट ना वक्त पर मुकम्मल करें ताकि ऐवान का कामकाज में आसानी पैदा हो सके। पुणे की एक मारूफ तंजीम सरहद का एहतमाम नाल एसकेआईसीसी श्रीनगर में ललित अवार्ड्स तकरीब को इनकाद कियो गयो। तकरीब के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर की चार मुमताज खवातीन नामवर शायरा बिमला रैना, साहित्य अकाडमी अवार्ड याफ्ता दानिश्वर प्रोफेसर नसीम शफाई, मुसन्निफा और राजभाषा की माहिर डॉक्टर सकीना अख्तर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरक्षा अंद्राबी ना उनकी नमाया खिदमात का एतराफ मां ललित अवार्ड्स ना नवाजियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की एक मारूफ माहिर तालीम कलमकार और तर्जुमान नगार प्रोफेसर नीरजा मट्टू ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ना सरफराज कियो। बाद में डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने मीडिया नाल गल करता में कियो,
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घरों में ललित का नाम हर एक औरत से मंसूब किया जाता है। वो नाम जो उस लेडी के लिए लिया जाता है कि वाकई इच्छा ललित, तो उस अवार्ड से नवाजा जाना और वो लेना मेरे लिए बाइस से फख्र है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस तंजीम ने मुझे चुना और मेरे काम की सराहना यहाँ पे हुई, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस अवार्ड से मुझे नवाजा।
0: जम्मू कश्मीर बैंक यूटी का मुख्तलिफ सेक्टर ना फरोक देन और लोगों ना आला मियार की बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब कराने वास्ते हर मुमकिन इकदाम कर रहे है। इस तालुक नाल जम्मू कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता वहां क्यों।
3: जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो, रिक्वायरमेंट जो लोगों को होता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम पे लेंडिंग प्रोवाइड करता है जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम साल में करीब करीब 60-65 हज़ार कैंप्स करते हैं जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनकी कमजोर है। रिमोट एरियाज में जा करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। और हम एक और काम जम्मू एंड कश्मीर बैंक करती है, वो अनबैंक्ड जो एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में हर जगह पे या तो ब्रेक एंड मोटर ब्रांच या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो खिदमत सेंटर्स कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई वजारती काउंसिल की 7वीं मीटिंग के दौरान कई तालीमी इदारों का ना मारूफ शख्सियात और शहीदों का ना पर रखने मंजूरी दी गई है। फैसला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जम्मू को ना अनजहानी प्रिंसिपल कुलदीप कुमार बडियाल और गवर्नमेंट हाई स्कूल हापत नाल अनंतनाग का ना मरहूम आदिल हुसैन शाह का नाम पर रखो गयो है। सेहत और तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज हापत नाल अनंतनाग में गवर्नमेंट हाई स्कूल को ना तब्दील कर गए शहीद आदिल हुसैन शाह मेमोरियल सुकूर रखने वास्ते हुई तकरीब की सदारत की। वजीर मौसूफा ने इस मौका पर आदिल हुसैन की बहादुरी की तारीफ करता हुआ क्योंकि पूरा मुल्क उनकी बहादुरी और दलेरी ना एक लम्बा अरसा तक याद रखे है। इस कैनाली गोजरी खबर मौके आकाशवाणी श्रीनगर ते खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी मना शुरू है गो दियो इजाजत रब रखो।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को

0: विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तो छो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन ट्यून कुरमुत मीडियम वेव आक्सा सखत शुराकुल हर्ट्स तो FM अखत त्राशारिया 5 मेगाहर्ट्ज़ पेट 5 मिनट पेट शबजी समीन पेश प्रोग्राम गर्मी बाइन हिंद खतरे।

0: वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 9018074333।
4: 9018074333।
5: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
6: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
7: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
5: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
7: अच्छा भाभी।
5: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच लें कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
7: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
11: शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समन, कल 21 मई को नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनाकिद होगी। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ वजारतों के कामकाज का जायजा लिया जाएगा और आगे के कामकाज के लिए नक्शा राह तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि मरकजी काबीना में तौसी की उम्मीद भी है, गर्चे इस सिलसिले में मुसद्दिका तौर पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। इधर आज जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सरहदी इलाका उड़ी का दौरा किया। दौरे के दौरान मौसूफ ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लिया और अवामी सहूलियात की फराहमी की नस्बत से मुफसल जानकारी भी हासिल की। उड़ी से जफर इकबाल की रिपोर्ट।
12: जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज सरहदी कस्बा उड़ी में एक अवामी दरबार से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 1.5 साल में सरहदी कस्बा उड़ी के लिए करीब 20 सड़कों की मंजूरी दी गई जिनकी कुल कीमत 126 करोड़ के आसपास है। उन्होंने बताया कि जो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, मैं उन्हें पूछता हूं कि क्या उन्होंने गुज़िश्ता 12 सालों में यहां 24 रुपए भी खर्च किए हैं। उन्होंने कहा ये उम्र सरकार है, हमने सरहदी कस्बा उड़ी में 1.5 सालों में सड़कों पर इतनी बड़ी रकम खर्च की और अभी हमारे 3.5 साल बकाया है। नायब वजीर आला सरहदी कस्बा उड़ी के एक रोजा दौरे पर थे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान उड़ी में मेंबर असेंबली उड़ी डॉक्टर सजाद शफी की मौजूदगी में ऑफिसर क्लब उड़ी में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की एक जामा जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने वजीर आला को उड़ी हल्का में जारी तरक्याती कामों, अवामी बहबूद की स्कीमों और अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी। इस दौरान रास्ता, सड़कों, बिजली, पानी की सहूलियात, सेहत की देखभाल, تعلیم اور دیگر ترقیاتی

0: लोगों के हवाले से बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान मेंबर असेंबली उड़ी डॉक्टर सजाद शफी ने हल्का उड़ी के लोगों के कई अहम आवामी मसाइल और तरक्याती मुतालबात पर रोशनी डाली और तमाम जारी प्रोजेक्टों को बुर वक्त मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। नायब वजीर आला ने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो लगन के साथ काम करें और इस बात को यकीनी बनाए कि उड़ी हल्का के लोगों के फायदे के लिए तरक्याती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। नायब वजीर आला ने अपने दौरे के दौरान जहनपोरा बोनियार में अजाफी क्लास रूम्स और लाइब्रेरी का जायजा लिया। चंदवाड़ी बगना और दरकुंटिया में काम करने का काम जायजा लिया। इस दौरान कई वफूद से मुलाकात भी की और उनके मसाइल भी सुने। उड़ी में जेर जमीन बैंकरों के हवाले से शहरबीन के पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि बैंकरों की तामीर की रुकूमत मरकजी सरकार वागजार करती है। उन्होंने कहा कि सरदी कस्बा उड़ी में कहीं बैंकर बनाए गए हैं मगर जिनकी रुकूमत अभी भी बकाया है। तहम हमने मरकजी सरकार से सिफारिश की है कि सभी इलाकों में जेर जमीन बैंकर तामीर किए जाएं।
1: सबसे पहले जो हम रुके हैं, हम गए जो जिप्सन की हमारी जो वहाँ पे बगना में माइनिंग है उसको देखने गया था क्योंकि वहाँ काफी सारे लोगों का हमारा रोजगार का इशू है और वहाँ इलीगल माइनिंग का भी इशू था तो वो चीज हमने देखी। उसके बाद पीएमजीएस भाई की कुछ सड़कें हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें हमने देखी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे उड़ी के अंदर ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग हमारी हुई है और उसमें हमने पूरा फीडबैक लिया और जो इश्यूज थे ऑनरेबल एमएलए साहब के, सजाद उड़ी साहब के, इन्होंने भी अपने ऑफिसरों को वो सवाल पूछे और उनके इश्यूज के बारे में जो लोगों से रिलेटेड थे जो जो भी थे उसके बारे में इन्होंने पूछा और जो ऑफिसर्स ने अपना अपना जवाब दिया और जो मेरा था मैंने भी ऑफिसर्स को जो डायरेक्शन देनी थी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो डायरेक्शन दी है। काफी सारे इश्यूज भी लोगों के रेज हुए, कुछ रास्ते में मेरी बहनें भी मिली जिन्होंने अपने भाई का रास्ता भी रोका, उनको पानी नहीं मिल रहा था 20 दिन से, वो मैंने ऑफिसर्स को कह दिया है, जो कंसर्न पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर उनको भी बोल दिया है और उनका पानी का ठीक होना चाहिए सिस्टम और काफी सारे इश्यूज थे जिनको वहां अंदर हमने डिस्कस किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उमर साहब की किरदार खोया, किसी ने माइनिंग के ब्लास्ट में अपने माल मवेशी खोए, ये बड़ा बड़ा एक इतिहास है बॉर्डर के लोगों का और मैं खुद एक बॉर्डर से आता हूं और मैं समझ सकता हूं कि बॉर्डर का दर्द क्या है। इसलिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि और बार बार हम हमेशा मीटिंगों में भी कहते हैं और ये जो बॉर्डर का लोगों के लिए जो जिनको बंकर्स की जो रिकमेंडेशन यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से गई हैं, उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी वो बंकर्स के जो हमारे यहाँ से जितने भी बंकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिकमेंड किए हैं वो सेंक्शन करके भेजेगा ताकि ये हमारे लोगों के बंकर बन सकें और ये बॉर्डर के लोग अपने माल मवेशियों और अपनी जान को बचा सकें। देखिए सिदरा में कल जम्मू में जो हुआ वो एक बदकिस्मती थी और एक ऐसा दिन था जो नहीं आना चाहिए था। बात ये नहीं कि वो किस कम्युनिटी से थे, क्या वो गुजर थे, बकरवाल थे, बात वो नहीं, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो बात नहीं। बात एक इंसानियत की है, वो इंसान जिसका बड़ी पाई पाई जोड़ के अपना मकान बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाता है। अगर ये इलीगल लोग थे, इनकी कंस्ट्रक्शन इलीगल थी, जमीन अगर फारिश की थी तो जब ये मकान रातों रातों नहीं बने। गुजर लोग नहीं है जो आज यहाँ पे आके बसे या दूसरे लोग आज आके, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, जो आज आके बसे, सदियों से वहां रह रहे थे और अगर ये रह रहे थे ये मकान एक दिन में नहीं बना होगा, दो दिन में नहीं बना होगा, तो उस समय ये डिपार्टमेंट कहाँ थे, उस समय क्यों नहीं रोका इनको मकान बनाने से। उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरवीन करेंगे और इंसाफ करेंगे, जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनके मकान द्वारा वहां बनवाए जाएंगे और उन लोगों को मुआवजे दिए जाएंगे और उन लोगों को जीने का पूरा हक दिया जाएगा।
2: जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का उड़ी का दौरा, जफर इकबाल की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर सेहत तिबी तालीम समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज गवर्नमेंट हाईस्कूल हापतनाल का नाम तब्दील करके इसे शहीद आदिल हुसैन शाह मेमोरियल हाईस्कूल हापतनाल के नाम से मौसूम किया। वजीर है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना वाकये में आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान पर खेलकर कई सयाहों की जाने बचाई थी। आज की तकरीब में रुकने असेंबली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कल्लू समेत कई अफसरान, मकामी लोग और शहीद आदिल हुसैन के अहल खाना भी मौजूद थे। तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सकीना इतू ने शहीद आदिल हुसैन शाह को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और स्कूल को उनके नाम से मंसूब करना उनकी बहादुरी का बरमला एतराफ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के शोबों में बेहतरी के लिए संजीदगी से काम कर रही है।
3: शहीद आदिल साहब जो थे वो तो हर एक के दिल में है, हर एक उनको याद करता है।

0: वसूल कर रही है, जबकि मेटाडोर और बसेस भी ज्यादा किराया वसूल कर रही है। मोहम्मद अयूब के मुताबिक कोटरंका से जमोला 120 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सुमित शर्मा के मुताबिक रजौरी से पोटा 15 किलोमीटर पर 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। अल्ताफ के मुताबिक रजौरी से गंडकोर 12 किलोमीटर पर 40 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि अगर कोई शख्स किराए के बारे में सवाल उठाता है तो ड्राइवर बदतमीजी पर उतर आते हैं और बाज औकात मुसाफिरों को गाड़ी से उतारने की धमकी भी देते हैं। ड्राइवरों का मतलब है कि गाड़ी की खरीदारी में मुसाफिर का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए उन्हें पूरा किराया अदा करना होगा, जिससे मुतलका इलाकों की आवाम ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है, खास तौर पर उन रूट्स पर जहां गाड़ियों की तादाद कम है और सिर्फ ऑटोमैटिक या इको चलती हैं, वहां दुगना किराया वसूल किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि इन रूट्स पर रोजाना की बुनियादों पर चेकिंग की जाए, सरकार की तरफ से जो किराया मंजूर किया गया है उसे जमीनी सतह पर नाफज करवाया जाए, तमाम मुसाफिर गाड़ियों में किराए की फहरिस्त लगाना जरूरी लाजमी करार दिया जाए ताकि आवाम को इस लूट मार से निजात मिल सके। लोगों ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और पुलिस ट्रैफिक से मुतालबा किया है कि जिला के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में भी चेकिंग की जाए ताकि सड़कों की हस्ताहाली और अवर लोगों के हादसा को रोका जा सके।
1: रजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में एआरटीओ रजौरी आशिक रफीक मलिक से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया।
2: देखिए, इसमें हम अगर इस एरिया में शिकायत आ रही है तो हम वहाँ पे इन्फोर्समेंट बढ़ाएंगे और रैंडम चेक्स करेंगे और वहाँ पे जाके जो सवारियां हैं उनसे भी पूछेंगे, अगर सच में ऐसा है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है उनको पेनलाइज किया जाएगा।
1: आपने जो कि हाल में ही ज्वाइन किया है एआरटीओ रजौरी, तो कब तक तवक्कु रखी जा सकती है कि आप एक्शन करेंगे इस बारे में?
2: वेरी सून, इसी हफ्ते में, इसी वीक में, आज से ही मैं कुछ टीम्स को भेजूंगा और कोशिश करूंगा कल मैं खुद भी निकल पाऊँ। विद इन डेज जो है इसके ऊपर जो है हम एक्शन लेंगे।
1: और ये शिकायतें दुरुस्त पाई गई तो क्या आपका रवैया होगा?
2: इसमें उनको उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, कंसर्न जो भी उनका परमिट है या कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हमें उसको सस्पेंड भी करना पड़े, जो भी लीगल एक्शन होंगे वो उनके खिलाफ लिए जाएंगे और इन फ्यूचर के लिए उनको वार्निंग दी जाएगी, अगर कोई ऐसा दोबारा करता है तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। हम पब्लिक को भी अपना जो नंबर है वो शेयर करके आएंगे। आज सुबह भी मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया भी था, उसमें मुझे इतने तरहाल एरिया का मुझे आया था वहाँ कम्युनिकेशन, तो मैंने उनको इश्योरेंस दिया है कि मैं अपनी टीम्स को भेजकर इवन खुद कुछ जगहों पे खुद जाके भी इस चीज को चेक करूंगा।
1: किराए के अलावा एक और शिकायत हमें मिली है कि ओवरलोडिंग काफी रूट्स पे हो रही है।
2: ओवरलोडिंग का जहाँ तक है अगर ऐसा पाया गया तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा।
1: आप ये यकीन दिलाते हैं रजौरी जिले की आबादी को कि इस बारे में आप कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर।
1: ये थे एआरटीओ रजौरी आशिक रफीक मलिक। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने तापर बाबा ऋषि सड़क की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया है कि सड़क की मरम्मत और तजदीद के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। जीएम शाहीन के बकौल इस सड़क पर इनिसार करने वाली आबादी को रोजाना उबर मरूर में तरह तरह की दिक्कतों का सामना रहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की पीसीओएस टास्क फोर्स के नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने पीसीओएस का नाम तब्दील करके इसे पीएमओएस रखने की तजवीज पर सख्त एतराज जाहिर किया है। उनके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की प्रोफेसर नीना मल्होत्रा और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के प्रोफेसर राकेश सहाय ने भी इस फैसले को कबलज वक्त और गैर साइंसी करार दिया है। माहरीन के मुताबिक इस नए नाम पर आलमी सतह पर मुकम्मल इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है और ऐसा करते हुए भारत और चीन जैसे ममालिक के बड़े तहकीकी आदादोशुमार को शामिल नहीं किया गया है जहां पीसीओएस के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं। प्रोफेसर गनाई के मुताबिक भारत में तकरीबन 4,40,00,000 जबकि चीन में 3,10,00,000 खवातीन इस आरजे में मुबतला हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओएस नाम में ओवेरियन और पॉली एंडोक्राइन जैसे अल्फाज तिब्बी तौर पर उलझन पैदा कर सकते हैं जबकि बीमारी की असल अलामत हाइपर एंड्रोजेनिज्म को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की कॉल पर आज मुल्क भर के अद्वियात फरोशों ने हड़ताल की। तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख केमिस्ट और ड्रग डीलर्स अपनी दुकानें बंद करके ई फार्मेसियों और ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तंजीम का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसियों और ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते हुए कारोबार से छोटे मेडिकल स्टोर के वजूद और रोजगार को खतरा लाहिक है। अद्वियात फरोशों ने अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त और होम डिलीवरी पर पाबंदी का मुतालबा किया है। हड़ताल की वजह से मुल्क भर में तकरीबन 1.2 से 1.5 मिलियन मेडिकल स्टोर और होलसेल

0: खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
1: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
2: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
3: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
4: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
7: इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
9: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा। हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
7: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमें निरंतर चौकस और चौकन्ना रहना होगा, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर पड़ोसी मुल्क से आने वाले आतंक के खतरों का भी मुकाबला करना है। शक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य और समर्पण ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है।
1: वाज़ रहे कि मजमूई तौर पर JKP में 3,200 से ज़ायद कांस्टेबलों को भर्ती किया गया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, DGP नरीन प्रभात और पुलिस और सिविल इंतजाम के दीगर कई सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़िदा वज़ारती कौंसिल की 7वीं मीटिंग के दौरान कई तालीमी इदारों के नाम मारूफ शख्सियात और शहीदों के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई। फैसले की रूह से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जम्मू का नाम आंझानी प्रिंसिपल कुलदीप कुमार बडियाल और गवर्नमेंट हाई स्कूल हापतनाड़ अनंतनाग का नाम मरहूम आदिल हुसैन शाह के नाम पर रखा गया है। सेहत तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज हापतनाड़ अनंतनाग में गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद आदिल हुसैन शाह मेमोरियल स्कूल रखने के लिए मुनक़िदा तकरीब की सदारत की। वज़ीर मौसूफ़ा ने इस मौके पर आदिल हुसैन की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा मुल्क उनकी बहादुरी और दिलेरी को एक लंबे अरसे तक याद रखेगा। इस मौके पर MLA पहलगाम अल्ताफ़ अहमद कुल्लू के अलावा कई दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू की सदारत में आज खानाबल में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें अनंतनाग और कुलगाम से आए कई वफूद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। वजीर मौसूफा ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार देही इलाकों को शहरी इलाकों के हम पल्ला तरक्की देने के लिए पुरअज़म है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में उड़ी के सरहदी इलाकों के तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने तरक्याती अमल का जायजा लेने के अलावा अवामी राबताकारी के प्रोग्रामों की भी सदारत की। ऑफिसर्स क्लब में मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान उन्होंने उड़ी के लिए लाजमी खिदमात की दस्तियाबी का जायजा लेते हुए तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक़्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठर ने आज चाड़ूरा में चौधरी गुंड के मकाम पर नाला अबजरी पर एक पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पीकर मौसूफ ने कहा कि 4,75,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए गए इस पुल से मकामी लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में नए लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने वहां तामीर हो रहे मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। उन्होंने अमल आवरी प्रोजेंसियों पर जोर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट की बरवक़्त तकमील यकीनी बनाए ताकि ऐवान के कामकाज में आसानी पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को तमाम तरजदी सहूलियात से लैस किया जाना चाहिए। बाद में मुशीर मौसूफ ने कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। पुणे की एक मारूफ तंजीम सरहद के अहतमाम से SKICC श्रीनगर में ललदत अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की 4 मुमताज खवातीन नामवर शायरा बिमला रैना, साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता दानिश्वर प्रोफेसर नसीम शिफाई, मुसनिफा और राजभाषा की माहिर डॉक्टर सकीना अख्तर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान राबी को उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में ललदत अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की एक मारूफ माहिर तालीम कलमकार और तर्जमा निगार प्रोफेसर नीरजा मुट्टू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया। बाद में डॉक्टर दरख्शान राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा,
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घरों में ललित का नाम हर एक औरत से मंसूब किया जाता है। वो नाम जो उस लेडी के लिए लिया जाता है कि वाकई इच्छा ललित, तो उस अवार्ड से नवाजा जाना और वो लेना मेरे लिए बाइस फख्र है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस तंजीम ने मुझे चुना और मेरे काम की सराहना यहाँ पे हुई, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सौ रोजा नशा मुक्त अभियान के तहत सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस बिद्दत से नौजवानों को छुटकारा दिलाने के लिए बेदारी और बाजाबादकारी के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जबकि ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है। इंतजाम ने मनशात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का तहिया कर रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी

0: किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से छुटकारा देने के लिए दरकार इकदामात के हवाले से एक उस्ताद मुसविर महराज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: ड्रग्स एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के मुस्तकबल को तबाह कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कयादत में नशा मुक्त भारत अभियान उम्मीद की एक किरण है। वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी को मिलकर नौजवानों की रहनुमाई करनी होगी। मोहब्बत, अच्छी तरबियत और शऊर के जरिए ही हम एक महफूज, सेहतमंद और नशे से पाक माशरा बना सकते।
1: इधर कश्मीर पुलिस की जानिब से मनशात के सुमलरों के खिलाफ जोरदार कार्रवाइयां जारी हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कार्रवाइयों के एक हिस्से के तौर पर 2 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और 14 अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दी है। श्रीनगर पुलिस ने हाका बाजार लाल बाजार श्रीनगर में एक मतलूब तरीन ड्रग स्मगलर अरशद अहमद शेख की 1.5 करोड़ रुपये मालियत के असासे को मुनहदम कर दिया। बारामूला और अनंतनाग में पुलिस ने गैर कानूनी तौर से काश्त की गई खशखाश की फसल को तबाह करके मुतलका अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए हैं। इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने NDPS के तहत कसूरवार एक जमानत याफ्ता शख्स पर निगरानी रखने के लिए उसकी हथेली पर एक GPS कड़ा पहना दिया है। इसी दौरान पुलिस ने गांधरबल, अनंतनाग और बारामूला में अलग अलग कार्रवाइयां अंजाम देकर मजीद 5 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हेरोइन सप्लाई करने वाला नानील अनंतनाग का इम्तियाज अहमद डार और क्रिश्चन भी शामिल है। इस दौरान अवंतीपुरा पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कई मकाम पर छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई। PDD के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने आज झील डल में एक मीटिंग के दौरान आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतलका महकमों को हिदायत दी है कि वह यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मेयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो MSME हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो, रिक्वायरमेंट जो लोगों को होता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम पे लेंडिंग प्रोवाइड करता है जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम साल में करीब करीब 60-65 हज़ार कैंप्स करते हैं जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनकी कमजोर है, रिमोट एरियाज में जा करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। और हम एक और काम जम्मू एंड कश्मीर बैंक करती है, वो अनबैंक्ड जो एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, हर जगह पे या तो ब्रेक एंड मोटर ब्रांच या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो खिदमत सेंटर्स कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
1: स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर ने पंचायत चुनाव फहरिस्तों का सालाना रिवीजन मुकम्मल किया है और इस सिलसिले में 1 अप्रैल 2024 को क्वालिफाइंग डेट मुकर्रर किया गया है। नए हतमी चुनाव फहरिस्त मुश्तहर किए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु ने कहा है कि इन चुनाव फहरिस्तों में नए 3,39,000 राय दहंदगान का इंदराज किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब के दौरान कई नौजवानों और कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। बीजेपी OBC मोर्चा जम्मू कश्मीर का एक वफद आज जम्मू में पार्टी सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा से मुलाकात हुआ और OBC तबके से मुतालिक मामला उनकी नोटिस में लाया। दरअसल सत शर्मा ने एक मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी लीडरों और वर्करों पर जोर दिया कि वो UT के ज्यादा से ज्यादा बूथ्स पर मन की बात प्रोग्राम की समाअत को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में गरीब कुंभों के मकानात की मिसमारी को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश और मजम्मत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन की फूरी बाजाबादकारी का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा चैलेंजों और आजमाइशों का सामना यकजहती, आज़म और बाहमी एतमाद के साथ किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत अवामी तवक़ुआत पर पूरा उतरने के लिए मुतहरिक है। अपने हल्के इंतखाब हवा कदल के तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल सुनने के अलावा वहां तामीर तरक्की के कामों का जायजा लिया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने तापर

0: वरिशी सड़क की खस्ताहाली पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एलजी इंतजामिया से इस्तदा की है कि वो इस सिलसिले में मुतलका महकमों को मुतहरिक करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक को 36वीं बरसी पर याद करते हुए मरहूम को खराज अकीदत अदा किया है। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी शहीदी मिल्लत की तारीख साज खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के श्रीनगर दफ्तर में आज एक शानदार अदबी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अदीबों, शायरों, दानश्वरों और मुहक्किकीन की मौजूदगी में साइबान और पुरखाश नामी दो किताबों की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। साइबान के मुसन्निफ़ प्रोफेसर फारूक फयाज ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: साइबान का जो शेरी मजमुआ है, इसमें हमने पोस्ट मॉडर्न जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, उसी के पस मंजर में जिस तरीके से आज की जो शायरी है, आज का जो शेरी रवैया है, शेरी जो मुहावरा है, उसको हमने मतलब अपनी शेरी तख्लीकात में पेश करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से मैं लगता हूँ कि अगरचि इसमें मतलब की पुराना कलाम भी मौजूद है, मैंने जो पहले बहुत से पहले लिखा है, लेकिन उसमें से जो न्यू हिस्टोरिसिज्म का जो अप्रोच है, मॉडर्न जो क्रिटिकल का अप्रोच है, तो उनके उस रवैये को, उस लहजे को हमने कोशिश की है कि शेरी पेराई में ढालने की इस साइबा में।
0: इसी तरह से पुरखाश के मुसन्निफ प्रोफेसर रतन तलाशी ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया,
2: पहली किताब है मेरी जो मैंने रिलीज किया है। इससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनका वो रिलीज फंक्शन उस तरह से नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने वतन में मैंने इसको रिलीज किया, कश्मीर में रिलीज किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जहाँ मिला लोगों का, अपने दोस्त जो अहबाब जो शुभचिंतक जो थे सब आए हैं, खुशी के माहौल में किताब रिलीज हुई। मुझे उम्मीद है कि दिस बुक विल बी वेल रिसीव्ड, क्योंकि मैंने ये कश्मीरी पढ़ाया है और इस पढ़ाने के बीच मैंने जो अपने स्टूडेंट के अदब के मसाइल के में जो कुछ भी सीखा है, उन मसाइल पर मैंने इस किताब में बात की है।
0: नाज़िम ज़रात कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा है कि नौजवानों की तरफ से मकसबानी के यूनिटों का तजारती पैमाने पर क़याम नहायत हौसला अफजा है। आज शहद की मक्खियों के आर्मी दिन के मौके पर महकमे ज़रात के सदर दफ्तर श्रीनगर में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने गज़ाई सलामती, हयातियाती तहफ़ और माहौल की देर पाइयत में मधुमक्खियों की अहमियत उजागर की गई। जम्मू डिवीज़न में 23 मई मुनक़िद होने वाले रोज़गार मेले के दौरान 220 नौजवानों को सरकारी नौकरियों के तकरारनामे फराहम किए जाएंगे, जिनमें से कई एक को रेलवे में भी तैनात किया जाएगा। इस रोज़गार मेले में मुल्की सतह पर 51,000 उम्मीदवारों को तैनाती के आर्डर फराहम किए जाएंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर के 220 नौजवान भी शामिल होंगे। जम्मू के डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार ने बताया कि यह मौका उन 220 नौजवानों के लिए समाजी बाख्तियारी और इक्तसादी इस्तेहकाम का एक सुनहरी मौका होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तहान 1 जून को लिया जाएगा।
3: IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें।
0: जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है और जम्मू में दिन का दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। जम्मू में गर्मी की लू से बचने के लिए आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर।
0: मौसम محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

0: जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:24 और गरूबी आफ्ताब शाम 7:30 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: समीन आताब आज का तबसरा लेकर मैं बसारत कुल। आज दुनिया भर में वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है। शहद की मक्खियाँ कुदरत का एक अजीम तोहफा है जो न सिर्फ शहद पैदा करती हैं बल्कि ज़रिए पैदावार, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलाती तवाज़ुन बरकरार रखने में भी बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर शहद मक्खियाँ न हों तो फल, सब्जियाँ, बादाम, सेब और कई ग़िज़ाई अजनास की पैदावार शदीद मुतासर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में खसूस वादी कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती, मुतनवर नबातात और साफ माहौल की वजह से शहद के मक्खियों की अफजाइश के लिए नहायत मौजू खिता माना जाता है। ज़रिए माहरीन के मुताबिक मक्खियों की मौजूदगी से बागात की पैदावार में 20-30% तक इजाफा मुमकिन होता है। शहद की पैदावार के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जबकि भारत भी अहम पैदा कुनंदगान में शुमार होता है। कश्मीर में सालाना हजारों मेट्रिक टन शहद पैदा किया जाता है और इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कान मौजूद हैं। देही इलाकों में बेशुमार नौजवानों और तीन शहद की मक्खियों की परवरिश को एक पायदार खुद रोजगार के तौर पर इख्तियार कर सकते हैं। कश्मीर का ऑर्गेनिक शहद अपनी खालिसियत, खुशबू और तवाउन जैसी खसूसियात के बायस बैन अक्वामी मंडी में खास अहमियत रखता है। यूरोप और खलीजी ममालिक में ऑर्गेनिक शहद की मांग मुसलसल बढ़ रही है और अगर मुनासिब ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की जाए तो कश्मीर का शहद आलमी मंडी में कीमती ज़र मुबादला कमा सकता है। ताहम ज़रिए फसलों में कीड़े मार अद्वियात और जहरी स्प्रे का बेतहाशा इस्तेमाल शहद की मक्खियों की आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। माहरीन खबरदार करते हैं कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो न सिर्फ शहद की पैदावार मुतासर होगी बल्कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलाती तवाज़ुन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि माहौल दोस्त ज़राअत को फ़रोग दिया जाए, किसानों में बेदारी पैदा की जाए और शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। यही हमारी मईशत, ज़राअत और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

और कोविशील्ड जैसी देसी वैक्सीन तैयार की, बल्कि वैक्सीन मैत्री मुहिम के तहत दुनिया के 100 से ज्यादा गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को करोड़ों खुराकें मुफ्त या इंतहाई कम कीमत पर फराहम करके अपनी तिब्बी महारत का लोहा मनवाया। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती और मयारी जेनरिक अद्वियात तैयार करता है, जिसकी वजह से अफ्रीका से लेकर अमरीका तक लाखों मरीजों की जानें बच रही हैं और मुल्क के अंदर जन अशुद्धि केंद्रों के जरिए गरीब आवाम को 80 से 90% तक कम कीमत पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पिछले चंद वर्षों में मुल्क भर में नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स कायम किए गए हैं और दीही इलाकों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां आम लोगों को इनके घर के पास ही बुनियादी तिब्बी सहूलियात मयसर हो रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना के तहत मुल्क के तकरीबन 50 करोड़ गरीब और मुतवस्ता तबके के लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है, जिसने करोड़ों खानदानों को बीमारी के बाइस गुर्बत की दलदल में गिरने से बचाया है और हमारी रिवायती अद्वियात जैसे आयुर्वेद, योगा और यूनानी तिब को भी साइंसी बुनियादों पर आलमी सतह पर मकबूलियत मिल रही है। सामीन, अगर आपसे ये कहा जाए कि आज का हिंदुस्तान एक डिजिटल जादूगर बन चुका है, तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तान ने जो छलांग लगाई है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिलती और बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और नोएडा जैसे शहर आज दुनिया के सबसे बड़े टेक हब बन चुके हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सरबराह हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हमारी जहनी सलाहियतों का सबूत है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कॉरपोरेट दफातर तक महदूद नहीं रही, बल्कि डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत ये हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। आज हिंदुस्तान यूपीआई के इनकलाब की बदौलत डिजिटल अदायगियों के मामले में दुनिया का नंबर वन मुल्क है, जहां सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े मॉल्स तक हर कोई एक क्यूआर कोड के जरिए सैंगडू में लेन देन कर रहा है और दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी हिंदुस्तान के इस निजाम को देखकर दंग है। मुल्क के कोने कोने में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने की वजह से आज हिंदुस्तान में इंटरनेट डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है, जिससे करोड़ों दही नौजवान ऑनलाइन तालीम और महारत हासिल कर रहे हैं। आधार, डिजी लॉकर, कोविन जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गवर्नेंस को शफाफ और आसान बना दिया है, जिससे सरकारी इमदाद बगैर किसी बदउनवानी के सीधे गरीबों के बैंक खातों में पहुंचती है और हमारा मुल्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है, जहां नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज में नए नए हल तलाश कर रहे हैं। सामीन, इन तमाम शोबों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अब अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये बाहमी तालमेल ही वो ताकत है जो हिंदुस्तान को एक मजबूत और हमा जोहद तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं और उन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए सेहत के शोबे में टेलीमेडिसिन मुमकिन हो सकी है, जिससे दूर दराज के पहाड़ी और दीही इलाकों में बैठे मरीजों का इलाज शहर के बड़े डॉक्टर इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं, जबकि आईटी शोबे की बदौलत दिफाई निजाम ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं और अद्वियात की तहकीक में तेजी आ रही है। जब हम इन तमाम कामयाबियों पर नजर डालते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है और पिछली चंद दिहाइयों का सफर इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ चैलेंजों का सामना किया है, बल्कि उन्हें मौके में तब्दील कर दिया है। हर जगह हिंदुस्तानी अजम की कहानी लिखी जा रही है। अब वो वक्त दूर नहीं जब हिंदुस्तान एक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर दुनिया की रहनुमाई करेगा और इस सफर में मुल्क के साइंसदानों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, फौजियों और सबसे बढ़कर हमारे मेहनती नौजवानों का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। समिंग प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, पहले आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और अब हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। आज जो हम कहने जा रहे हैं वो जरा पेचीदा है और इसमें दुनिया भर के मुहरकात और हरकत के धागे उलझे हुए हैं। अगर जी इसको एक पॉलिश प्लेट के बतौर भी पेश करने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं, बात करेंगे अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मशरक वस्ता में बदलते हुए हालात, आलमी ताकतों की नई सफबंदी और पाकिस्तान के उस मुतजाद किरदार की जो एक बार फिर खुद को अमन का दाई और सालिस साबित करने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देता है। हालांकि जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मुतनाजा है। आज जब खलीज में जंग के हालात पैदा हो चुके हैं, अमरीका की जानिब से मुसलसल सख्त इंतबाहात दिए जा रहे हैं, खलीज फारिस में फौजी सरगर्मियां बढ़ रही है, आलमी मंडियां खौफ और बेयकीनी का शिकार हैं, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर कर रहा है और सफारती महाज पर शदीद कशीदगी महसूस की जा रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान अचानक खुद को एक अमन पसंद रियासत, मुजाकरात का हामी और खित्ते में इस्तेकाम लाने वाली कुवत के तौर पर पेश करने में मसरूफ है। इस्लामाबाद से बयानात आते हैं कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान पुल बन सकता है, पाकिस्तान सालसी के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया वाकई इस बयानिये को इतनी आसानी से कबूल कर लेगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ अल्फाज नहीं देखती, वो तारीख भी देखती है, किरदार भी देखती है और वो तजादात भी देखती है जो बरसों से पाकिस्तान की पॉलिसियों का हिस्सा रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और खारजा पॉलिसी की बुनियाद कई दिहाइयों तक इसी सोच पर खड़ी रही कि मुल्क की असल ताकत इसकी मईशत, साइंस, तालीम या सनती तरक्की में नहीं बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हर आलमी बहरान में खुद को एक ज्योग्राफियाई सहूलतकार के तौर पर पेश किया। सर जंग में अमरीका को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी चाहिए था, पाकिस्तान हाजिर था। अफगानिस्तान में सोवियत जंग छिड़ी, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन, फिजाई हदूद, इंटेलिजेंस नेटवर्क, तरबियती कैंप और लॉजिस्टिक रास्ते

आलमी ताकतों के लिए खोल दिए। इसके बाद तालिबान के खिलाफ जंग में अमरीका को एक बार फिर खित्ते में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर दरकार था। पाकिस्तान दोबारा हाजिर था और आज जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ रही है तो पाकिस्तान एक बार फिर इसी पुराने किरदार में नजर आता है। एक ऐसी रियासत जो बज़ाहिर अमन की बात करती है मगर जिसकी असल अहमियत बड़ी ताकतों के लिए इसके ज्योग्राफियाई फिजाई रास्तों बंदरगाहों इंटेलिजेंस ताउन और लॉजिस्टिक रसाई में है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान आज दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो अमन का सबसे बड़ा हामी है तो बहुत से आलमी मुबस्सरीन इस दावे को शकूक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अगर कोई मुल्क वाकई मुस्तकिल मिजाज अमन पॉलिसी रखता हो तो वो इसकी खारजा पॉलिसी में इतने तजादात नजर नहीं आते। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात की बात करता है, दूसरी तरफ अमरीका के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखता है। एक तरफ इसराइल मुखालिफ जज्बात का इजहार किया जाता है, दूसरी तरफ मगरबी ताकतों के साथ खुफिया राबतों की खबरें सामने आती रहती हैं। एक तरफ खित्ते में जंग रोकने की

फिजाई रास्तों, बंदरगाहों, इंटेलिजेंस ताउन और लॉजिस्टिक रसाई में है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान आज दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो अमन का सबसे बड़ा हामी है, तो बहुत से आलमी मुबस्सरीन इस दावे को शकूक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अगर कोई मुल्क वाकई मुस्तकिल मिजाज अमन पॉलिसी रखता हो तो वो इसकी खारजा पॉलिसी में इतने तजादात नजर नहीं आते। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात की बात करता है, दूसरी तरफ अमरीका के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखता है। एक तरफ इसराइल मुखालिफ जज्बात का इजहार किया जाता है, दूसरी तरफ मगरबी ताकतों के साथ खुफिया राबतों की खबरें सामने आती रहती हैं। एक तरफ खित्ते में जंग रोकने की बात होती है, दूसरी तरफ आलमी ताकतों को यह यकीन दहानी भी कराई जाती है कि पाकिस्तान उनके स्ट्रेटेजिक मुफादात के लिए जिम्मेदार पार्टनर है। यही दोहरापन पाकिस्तान के बयानी को कमजोर बनाता है। असल सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान मुजाकरात कर सकता है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई एक आजाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी रखता है। क्योंकि अगर किसी मुल्क की मईशत मुसलसल कर्जों पर खड़ी हो, अगर IMF के बगैर बजट बनाना मुश्किल हो, अगर हर बड़े माशी फैसले के लिए वाशिंगटन, बीजिंग या खलीजी दारुल हुकूमतों की तरफ देखना पड़े, तो फिर दुनिया में गैर जानबदाराना सालिस का तासुर कायम रखना आसान नहीं होता। हकीकत यह है कि अमरीका और ईरान के मौजूदा बहरान में पाकिस्तान की हैसियत बुनियादी तौर पर एक ऐसे मुल्क की है जो एक बार फिर आलमी ताकतों के दरमियान अपनी जोग्राफियाई इफादियत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यही पुराना मॉडल, कभी अमरीका के लिए फ्रंटलाइन स्टेट, कभी चीन के लिए इक्तसादी राहदारी, कभी खलीजी ममालिक के लिए फौजी माविन और कभी मगरबी ताकतों के लिए एक सिक्योरिटी बफर। सामिन प्रोग्राम के इस पड़ाव पर आइए पहले सुनते हैं आप और हम ये खूबसूरत सी गजल।

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। समीन, आज पाकिस्तान शदीद माशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई आम आदमी की कुव्वत खरीद को खत्म कर रही है। नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, सनअतें दबाव का शिकार हैं, बिजली और ईंधन के बहरान मईशत को कमजोर कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम मुसलसल बढ़ रहा है और सरमायाकार गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। लेकिन इस सब के बावजूद ताकत के मराकज अब भी वही पुरानी जियो पॉलिटिकल जबान बोलते नजर आते हैं। स्ट्रैटेजिक अहमियत, कौमी सलामती, इलाकाई किरदार, जगराफियाई इफादियत, दुनिया आज मसनवी जहानत, खलाई साइंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान अब भी आलमी ताकतों के खेल में अपनी इफादियत साबित करने में मसरूफ दिखाई देता है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के इस माहौल में पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आवाम के मुफादात का सोचना चाहिए, न कि सिर्फ ये कि वो एक बार फिर आलमी ताकतों के लिए कारामद ज्योग्राफियाई कैसे बन सकता है, क्योंकि तारीख ये साबित कर चुकी है कि बड़ी ताकतें हमेशा अपने मुफादात को तरजीह देती है। जब तक किसी मुल्क की जरूरत हो उसे अहम इत्तेहादी कहा जाता है और जब जरूरत खत्म हो जाए तो वही मुल्क तन्हाई, माशी दबाव और दाखिली बहरानों का शिकार छोड़ दिया जाता है। अफगानिस्तान की जंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अमरीका के लिए किरदार अदा किया, लेकिन जंग खत्म होने के बाद वही पाकिस्तान दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, माशी दबाव और दाखिली अदम इस्तेकाम के बोझ तले दब गया। आज अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में भी खतरा यही है कि पाकिस्तान एक बार फिर किसी ऐसे खेल में खुद को शामिल कर ले जिसके नतीजे तवील मुद्दत में खुद इसके लिए नुकसानदेह साबित हो। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया तबका अब सवाल पूछ रहा है। नौजवान नस्ल पूछ रही है कि आखिर कब तक मुल्क दूसरों की जंगों में अपनी जगह तलाश करता रहेगा, कब तक कौमी तरजीहात सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के गिर्द घूमती रहेगी, कब तालीम, टेक्नोलॉजी, सन्नत और इंसानी तरक्की असल कौमी एजेंडा बनेंगे। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आज ताकत सिर्फ फौजी ताकत से नहीं आती बल्कि मईशियत, टेक्नोलॉजी, तालीम और इदारा जाती इस्तेकाम से आती है। चीन ने तरक्की जंगी नारों से नहीं बल्कि सनती इंकलाब से हासिल की। जनूबी कोरिया ने आलमी असर रसूख अस्करी प्रॉक्सियों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और तालीम से हासिल किया। सिंगापुर ने ज्योग्राफी के बजाय गवर्नेंस को अपनी ताकत बनाया, लेकिन पाकिस्तान अब भी अक्सर उन्हीं पुराने जियोपॉलिटिकल खेलों में उलझा दिखाई देता है, जहां बड़ी ताकतें अपने मुफादात हासिल करती है और खित्ते के ममालिक उनके मोहरे बन जाते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूदा बहरान में पाकिस्तान अगर वाकई एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर पॉलिसी की वजाहत पैदा करना होगी। इसे ये वाजिया करना होगा कि वो किसी भी आलमी ताकत का मुस्तकिल स्ट्रैटेजिक आला नहीं बनेगा, मगर ऐसा होना नामुमकिन नहीं क्योंकि सारा खेल पैसे का है, डॉलर का है। अमन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों, सफारती बयानात और सियासी नारों से नहीं आता। अमन उस वक्त आता है जब रियासतें मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं, दोहरे मयार तरक करें और अपनी खारजा पॉलिसी को वाकई खुद मुख्तार बनाएं और इस माइंडसेट से बाहर आएं कि कितना मिलेगा बल्कि ये भी देखें कि कितना गंवाना पड़ेगा। समीन, पाकिस्तान के लिए भी यही लम्हे फिक्रिया है, क्या वो एक हकीकी खुद मुख्तार तरक्की पसंद और मुस्तकम रियासत बनने की कोशिश करेगा या फिर हमेशा आलमी ताकतों के दरमियान एक स्ट्रैटेजिक स्पेस और लॉजिस्टिक पार्टनर्स के तौर पर अपनी

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं।
2: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
3: जिलानामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के जिलानामा में हम जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में ज़िरात के शोबे में अमलाए जा रहे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और दीगर फलाही स्कीमों से मुतल्लिक बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एजाजा अख्तर और आबिदा अख्तर। समीन, मरकजी सरकार ने चंद साल कबल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स लॉन्च किया और इस मिशन के तहत पूरे मुल्क में सरसों की काश्त और पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को कहीं मुफ्त और कहीं इंतहाई कम नरखों पर सरसों के मैयारी बीज फराहम किए जाते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भी महकमे ज़राअत इस मिशन की अमलावरी के लिए शद्दोमद से काम जारी रखे हुए है और रवा बरस महकमे ने जिले में 18,600 हेक्टेयर अराजी पर इस स्कीम के तहत सरसों काश्त की है। जिले में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और ज़राअत के शोबे की दीगर स्कीमों के अमलावरी के मंजरनामे से मुतल्लिक जब हमारे नुमाइंदे मीर नज़ीर ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा वहीदुर रहमान से इस्तफसार किया तो वो तफसीलात फराहम करते हुए यूं गोया हुए।
4: ऑयल सीड मतलब जो है वो सीड जिनसे ऑयल निकाला जाए, तो ये तो इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है 2023-24 में जो शुरू हो गया, 2030-31 तक ये जारी का नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। तो ये मुल्क की बाकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर रियासत में भी ये प्रोग्राम चल रहा है और इसके तहत इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी ये प्रोग्राम चल रहा है। पुलवामा का ये है कि इसमें जो खास जो चीज़ें प्रोग्राम की हैं वो ये है कि ब्रिंग मोर एरिया अंडर ऑयल सीड्स, मतलब उसमें एरिया बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है और क्वालिटी सीड जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करना है। तो इसमें हमें जो एरिया हमने एक्सपेंड किया खातर ख्वाह एरिया हमने बाकी सालों से, इस साल हमने 18,600 हेक्टेयर पर एरिया पे जो है पुलवामा में लगाया हुआ है। तो और ये प्रोडक्शन में भी खातर ख्वाह लास्ट सालों, पिछले साल कई सालों से चूँकि एरिया बढ़ा तो ये भी बढ़ी और क्वालिटी सीड की वजह से जो हम हाई यील्डिंग वैरायटीज फार्मर्स को दे रहे हैं उसकी वजह से भी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आइंदा आने वाले सालों में, चूँकि ये प्रोग्राम जारी है।

0: और सीट का जहाँ पे ताल्लुक है वो क्वालिटी सीट की जो है वो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें यह है कि हमारे जो सुकास्ट की भी एक वैरायटी है SS2, तो उसके अलावा हम बाहर से भी मतलब जो सीट्स हमें ऑयल सीट के हैं जैसे RH725, RH761, ये वैरायटीज भी 700 क्विंटल जो है हमने इस साल जो सीड है डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है फार्मर्स को,
1: अच्छा, फार्मर्स को
0: फार्मर्स को
1: ये फ्री ऑफ कॉस्ट
0: उनके
1: इनको।
0: उसमें कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे था और कुछ अच्छी खासी क्वांटिटी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को मतलब सीड दिया।
1: किस तरह आते हैं ये
0: तो
1: आपके पास, मतलब ये
0: हम
1: इसका अवेयरनेस कितना है?
0: देखिए अवेयरनेस ये है कि मतलब ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारे 13 जोन्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में,
1: पुलवामा
0: जोनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर वहाँ पे बैठते हैं, हमारे पंचायत लेवल पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट होते हैं, सर्कल लेवल पर हमारे जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं और डोर स्टेप पे ये पहुँचा रहे हैं। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 87 किसान खिदमत गर्ज हैं, उनकी भी खिदमत ली जा रही हैं, वो भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए, इसमें इसमें हमने ट्रेनिंग्स भी दी, तो अच्छा खासा हमें उसमें रिस्पांस मिला। तो आप खुद देख सकते हैं इस वक्त पुलवामा के फील्ड जो हैं ये
1: आप खुद गए हैं,
0: नहीं
1: आउटपुट
0: बिल्कुल
1: कितना अच्छा था,
0: आप मतलब
1: आउटपुट आज आ रहा है
0: नहीं,
1: इसका?
0: अभी तो ये क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पे है, तो जो फ्लावरिंग स्टेज पे जो हम जो इसका स्टेज है जो इस वक्त देख रहे हैं, हम एक बम्पर क्रॉप की जो है बम्पर प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं इस साल। तो इसके अलावा जो सीड विलेजों का जहाँ मैं बताता हूँ, सकास ब्रीडर सीड देती है वो हमारे फार्म्स पे, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फाउंडेशन सीड बनाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
1: जी
0: कर रहा है इसमें फाउंडेशन सीड जो हम है हम सीड विलेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑयल सीड के जो हैं ये सीड विलेज लगाए हुए हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी 50 हेक्टेयर पे हमने सीड विलेज लगाया हुआ है, जिसमें मैंने कल भी एक सीड विलेज को देखा, काफ़ी अच्छे वहाँ पे उसकी क्रॉप की जो पोजीशन है इस वक्त बहुत अच्छी है। तो इसमें एक तो हम फार्मर को सीड देते हैं क्वालिटी सीड जो है सर्टिफाइड सीड जो, और डिपार्टमेंट ही मल्टीप्लाई करता है और डिपार्टमेंट ही फार्मर को देता है
1: बिल्कुल
0: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके अलावा जो मतलब HADP में प्रोग्राम है, हमें सीड प्रोडक्शन के इंसेंटिव देते हैं हम फार्मर को। हाँ मतलब अगर कोई फार्मर 1 क्विंटल सीड प्रोड्यूस करता है तो उसको 850 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से उसको प्रोडक्शन इंसेंटिव यहाँ से देते हैं, और जो वो सीड तैयार करता है वो डिपार्टमेंट उनसे वापस प्रोक्योरमेंट करता है, 50% जो है वो डिपार्टमेंट ले लेता है, उसमें तकरीबन
1: अच्छा,
0: आठ
1: वापस प्रोक्योर
0: हाँ
1: करते हैं
0: प्रोक्योरमेंट करता है उसमें,
1: उनके साथ, ऐसा एग्रीमेंट है।
0: बिल्कुल एग्रीमेंट है उनके साथ, एक मतलब MOU एक साइन होता है उनके साथ जब हम सीड विलेज ले करते हैं, तो उससे हम उनसे हम और उनको हम कास्ट पेमेंट मतलब लैंडेड कास्ट पे जो उनकी लैंडेड जो उनको खर्चा आया हुआ होता है उससे भी ज़्यादा हम उनको, और फिर इंसिडेंटल चार्जेस भी उनको हम साथ देते हैं, तो उनसे हम वो सीड वापस भी ले रहे हैं और उसको हम बगैर उस सीड को प्रोसेसिंग करके उसको सर्टिफाइड सीड जो है वो फिर दोबारा अगले साल के लिए हम फार्मर्स को देते हैं हमारे ये सीड विलेज का। और ये जो ऑयल सीड का प्रोग्राम है इसमें फार्मर्स को सिर्फ अपने घर के लिए जो ऑयल तो वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा उनके पास सरप्लस भी होता है, वो सेल भी करते हैं,
1: मार्केट में
0: मार्केट
1: है।
0: प्ले मार्केटिंग की प्रॉब्लम है नहीं इसमें, क्योंकि ये हर घर में ये चीज़ लगती है तो लोग इसको ले रहे हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स जो है ये, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है इसमें जो ये काम कर रही है इस पर, और हमारे जो इसमें फील्ड स्टाफ है वो फार्मर के डोर स्टेप पे उनकी फील्ड में जाके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम
1: वो
0: दे रहे
1: सब आप
0: हैं।
1: करते हैं?
0: जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो मतलब इस वक्त जो जो वेदर कंडीशंस, बीच में काफ़ी ड्राट रहा, सर्दियों में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन टाइम सरसों क्रॉप के लिए खासकर टाइमली बारिश हुई, अब जो एक्सेसिव हो रही है, लेकिन उसमें भी हमारे जो फील्ड स्टाफ है हम मतलब एडवाइजरी जारी हुई हैं कि मतलब वो प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो फील्ड में रखा जाए, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको मतलब अवॉइड किया जाए, तो उस पर भी मतलब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी क्रॉप है इस साल और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी सालों से प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होगी।
1: ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो आपने अभी वेदर एडवाइजरी के बारे में बात की है, ये एक तो ऑयल सीड के बारे में, अभी सब्जियां भी बहुत हैं,
0: देखिए
1: उनके लिए
0: सब्जियों के
1: कोई
0: बारे में,
1: रेस्ट्रिक्शन है?
0: बिल्कुल सब्जियों के बारे में भी मतलब ये है जो है इसमें मेन जो चीज़ है वो लो लाइंग एरियाज में खासकर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम मतलब हो जाती है, स्टैग्नेशन की, तो वो लोगों को हम वक्तन वक्तन बोलते हैं जाके कि भाई ये आप ये पानी इससे पानी की निकासी का मतलब ये कीजिए, और वो कर रहे हैं। और फार्मर जो खासकर पुलवामा का जो फार्मर है बड़ा प्रोग्रेसिव फार्मर है, इनोवेटिव है और फटाफट चीज़ को वो कैश कर ले, और ये तो यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स ने कैश क्रॉप के हिसाब से चलती हैं, पुलवामा
1: बिल्कुल
0: डिस्ट्रिक्ट लीड कर
1: बिल्कुल।
0: रहा है ऑयल सीड में भी, इंशाल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश वैली के टॉप डिस्ट्रिक्टों में जो है इस वक्त, और वेजिटेबल में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा वो मतलब अच्छी खासी उसकी मतलब प्रोडक्शन हो
1: एज
0: रही
1: अ
0: है।
1: चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा, कई मैसेज है आपको, क्योंकि मौसम भी खराब है, आगे गर्मी भी होगी, तो किस तरह का रखरखाव करना है इनको, अपने इन खासकर एग्रीकल्चर लैंड में, या सीड्स हैं, ऑयल सीड हैं, या

0: सब्जियां हैं।
1: जी बिल्कुल, मतलब हमारा ये फील्ड स्टाफ है ऑलवेज अवेलेबल है गाइडेंस के लिए लोगों को, उनके साथ रब्ता करें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट उनके साथ, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो भी स्कीमें हैं फार्मर्स को चाहिए, इन स्कीमों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या HADP है या JKSIP है, तो इनका फायदा उठाइए, लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं थ्रू आवर ओन फील्ड स्टाफ एंड किसान खिदमतगार जो है उनकी भी खिदमत इसमें ली जा रही है।
0: वो जो आपका आलात कशावर्जी जिसको बोलते हैं या जो डिफरेंट मशीनरी है वो ऑनलाइन पोर्टल पे है, तो वो उनको मिलता है?
1: बिल्कुल मिलता है हमें, मतलब 5 साल का जो ये प्लान बना हुआ है, लास्ट ईयर का जो हमें टारगेट्स थे हमने वो अचीव किए, और इस साल जो अभी हमें टारगेट्स हैं इंशाल्लाह वो भी अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 26-27 उसमें लोगों को ये अभी और 2 साल ये जो है ये प्रोग्राम चलेगा HADP का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें हुई है, काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स मिला है हमें, मशीनरी खासकर बहुत डिमांड है ट्रैक्टर्स की, टिलर्स की, वीडर्स की, ब्रश कटर्स, इरीगेशन पंप सेट्स, तो ये चीज़ें जो हैं ये
2: वो आप और देते हैं इनको?
1: जी बिल्कुल, जो मतलब जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम ये उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।
3: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
4: शुक्रिया तजमल। सामईन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों से मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह काश्तकारी साइंसी तौर तरीकों से अंजाम देने की रिवायत शुरू हुई है, और मुतलका महकमा जहां काश्तकारों को मुख्तलिफ फसलों की काश्त के ताल्लुक से माहिर राय फराहम करता है, वहीं महकमे की जानिब से काश्तकारों को बीजों की मैयारी अकसाम भी फराहम की जाती है। इसके नतीजे में जहां पैदावार में खातिरख्वाह इजाफा दर्ज हो रहा है, वहीं किसानों की आमदनी भी माकूल हद तक बढ़ गई है। इसके नतीजे में हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी अब काश्तकारी की तरफ रागिब हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मीर नजीर ने नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स और ज़िराअत शोबे की दीगर फलाही स्कीमों से मुस्तफीद हुए चंद लोगों के साथ बात की, तो उन्होंने अपने तासुरात यूं बयां किए।
5: मेरा नाम है गौर अहमद शेख, मैं नेहमा पलोमा में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे किसान खिदमतगर जो है जो हमारे एलजी साहब ने स्टार्ट किया है वो भी मैं चला रहा हूँ। और इस साल क्योंकि पहले हम जो हमारा जो यहाँ पे मस्टर्ड था वो हम पहले लगाते थे, और दूसरा हम जो तेल जो था वो हम बाहर से खरीदते थे, जैसे मार्केट से खरीदते थे, और उसमें बहुत सारी मिलावट होती थी। और अब डिपार्टमेंट ने हमने इस साल एक नई वैरायटी दी मस्टर्ड की, जो SS2 वैरायटी जिसका नाम
0: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने,
5: हाँ सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निवा, उन्होंने हमने एक मस्टर्ड वैरायटी दी, SS2 वैरायटी उसका नाम है। और इस वैरायटी से जब हमने देखा क्योंकि मेरी जो मस्टर्ड लैंड है तकरीबन है वो 20 कनाल तक है, वो मस्टर्ड लैंड जिसमें मेरे भाई का भी है और मेरा भी है, और इस साल शुक्र है अल्लाह का प्रोडक्शन भी अच्छा निकला। जब इससे पहले हम मस्टर्ड लगाते थे एक कनाल में तकरीबन हमें 40 kg या 45 kg निकलते थे, मगर इस साल हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिली, तकरीबन हमें मिली 70 kg से 80 kg तक, हमें
0: डबल हो गया है ये।
5: हाँ सर, डबल हो गया इस साल। और इससे एक और चीज हमें इससे फायदा मिला, क्योंकि इससे पहले जब हम मस्टर्ड लगाते थे हमें कभी भी डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं कहा था, मगर जब हम इनकी वैरायटी लगाते थे तो उस वक्त हमें डिपार्टमेंट ने हर मौके पे इसका जो भी प्रोसीजर था या इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे या कौन कौन सा इसमें पेस्टिसाइड यूज करेंगे, हर वक्त डिपार्टमेंट ने हमें इसका ये प्रोसीजर बताया,
0: सपोर्ट किया
5: इसके लिए, और हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का शुक्रिया करते हैं, जिससे हमें आगे भी प्रोडक्शन अच्छी मिले। जो भी किसान है, किसान को चाहिए क्योंकि जो भी नई नई वैरायटी आती है खासकर हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे जो खासकर HADP जो है इसमें बहुत सारी ऑयल सीड्स दिए जाते हैं या कोई भी, जैसे कि इस साल हमने यहाँ पे इसका पैडी का भी लगाया SR4 वैरायटी नेहमा में, और इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा भी निकले क्योंकि जब हम इस सीड को चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छी हमें प्रोवाइड मिलेगी।
6: मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं इधर संबुरा बदलवा का रहने हूँ, हमारा तहसील पंपोर है। एक्चुअली ये जो सरसों की जो खेती है वो तो हम सदियों से यहाँ करते रहे हैं। एक्चुअली हमारा धान का खेती होता है, सरसों का खेती होता है, और सैफरन ऊपर करियम में होता है। पर्टिकुलरली हमारी जो मैदानी जमीन है उसमें ज्यादातर शाली और मस्टर्ड उगाया जाता है। तो देखने में आया कि इस साल जो मस्टर्ड का तो बहुत बम्पर था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पुलवामा से जो श्रीनगर की तरफ रास्ता जा रहा है, चाहे काकापोरा हो, चाहे सांबुरा हो, पतलबाग हो, नाहमा वगैरह, पूरे इलाके में साफरान की जो फसल है काश्तकारी हो रही है, इस साल बहुत बम्पर क्रॉप था। और आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि और एक अच्छी अचीवमेंट इस साल हुई कि हमने यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको जब छांटने का वक्त आता है, झाड़ने का वक्त आता है, एक मशीनरी भी यहाँ पर मैसर हुई कि जिससे हमको बहुत ही सहूलियत हुई कि इस साल मैंने पहली तौर से आपकी ट्रायल के तौर से मैंने इसको जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो फंटाई करनी थी तो फंटाई मशीन से की है, तो लेबर कंपोनेंट इसे बहुत बच जाता है। दूसरा ये है कि ये एक हमारी परंपरा रही कि हम अपना तेल उगा

0: है अपने मजदूर अपने अपने खेतों में और खुद इस्तेमाल करे। जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत सारे इंटरवेंशन किए हैं, जैसे उन्होंने हाइब्रिड शालीमार सीड दिया है, ट्रायल्स की बुनियाद पर फार्मों को दिया है, दो चार साल से वो दे रहे हैं ताकि इस यील्ड को इस ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कि जाहिर सी बात है कि इसका जो यील्ड आता है वो इस सीड जो उन्होंने सीड जेनेटिकल बनाया है इस सीड से यील्ड बढ़ गया है, क्रॉप बढ़ गया है। तो लोगों में जो तरहीब रही है वो ज्यादातर अब लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि मस्तूर की जो काश्तकारी है इसको और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश हमारे फार्मर कर रहे हैं।
1: अब पेश होगा प्रोग्राम का इदारिया और पेश कर रही हैं आबिदा अख्तर।
2: शुक्रिया जज़ा। सामिनार से एक दो दहाइयां कबल वादी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़राअत का शोबा तनज़ुली का शिकार हो रहा था और जब मुख्तलिफ फसलों की काश्त से काश्तकारों को फवायद कम और नुकसान ज्यादा होने लगे तो उन्होंने दीगर शोबाजात की तरफ इल्तिफात करते हुए जमींदारी को पसपुश डाल दिया। मगर अब जबकि ज़राअत के शोबे में साइंसी रहनुमाई और अमल दखल के नतीजे में फसलों का मेयार और फिर आमदनी बेहतर हुए हैं, वादी के कुर्ब व जवार में लोग अब ज़राअत के शोबे में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अगर हमें तिल सिया में खुद कफालत का निशाना हासिल करना है तो हमें दो चीजों पर फौरी और खास तवज्जो देना होगी। एक ये कि हम जरी अराजी को गैर जरी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने से परहेज करें और दूसरा हम फसलों के मेयार को बढ़ाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम अपने जरी शोबे को आमदन बख्श और रोजगार फराहम करने वाला शोबा बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे जमींदार हजरात सरकार की जानिब से ज़राअत के शोबे में चलाई जा रही स्कीमों की तरफ तवज्जो दें और सरकार या फिर मुतल्लिका महकमा को भी चाहिए कि वो ये बात यकीनी बनाए कि स्कीमों के ताल्लुक से आम लोगों में बेदारी पैदा हो और स्कीमों से मुस्तफीद होने का अमल आसान बनाया जाए।
3: इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
4: समीन ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप समाचार सुनेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
6: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़

0: रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा

0: सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नवन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए बीडीआर के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: تشواکاشونی ہن سرینگر سٹیشن ٹیون کورمت میڈیم ویو اخسا سخت 17 کلو ہرٹز تو ایف ایم اخت 3.5 میگا ہرٹزن پہ رس سز 9 بجے سمین ولو کیشر بد بوزو آغاز مز بوزو یہ کلام امیر شاہ کریری یہ نعتیہ کلام پیش کران غلام حسن صوف صاحب

0: नीलगु मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर अजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुतहद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नज़रिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बाहमी एतमाद और मुश्तरक इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खत्ते में जहाज़रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहिगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कु डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
1: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
0: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती ताउन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

भारत और मुत्तहिद अरब अमारात के दरमियान तिजारत जाम इकतसादी शराकत दारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिद अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज़मीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहाँ से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सबका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराम करदा 7 बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायस से पाक इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जाँच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जुनूबी कोरिया के दिफाई हसूलयाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरक फरोग, मुश्तरक पैदावार और मुश्तरक बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज़ करने से इतफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वज़ा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है।

0: भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेज़बान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जाम शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावक़ार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन ट्यून कुर्मुत मीडियम वेव अखत शुह किलो हर्ट्स तो FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पे रोज 9:30 बजे समीन पेश खदमत प्रोग्राम सन फनकार।

0: Hello, Mehfili Ghazal.
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इरम दीदी,
0: बिल्कुल
1: आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: बस अल्लाह का करम और आप बहन की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: कौन और
1: सुमिना
0: कहाँ
1: मैडम
0: से
1: कैसे
0: बात
1: हैं?
0: कर रहे हैं?
1: सुमिना जी कैसी है?
0: बिल्कुल ठीक हैं।
1: उनको सलाम कहिएगा मेरी तरफ से।
0: वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से आपको। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं साहिल बात कर रहा हूँ, आसारी शरीफ जनाब साहब आंचार से।
0: साहिल, कैसे हैं आप?
1: बस मैं ठीक हूँ दीदी। और
0: हमारे
1: आपके
0: बहुत
1: प्रोग्राम,
0: पुराने लिसनर हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं।
1: आपसे तो बात हो रही थी FM 2 में दीदी,
0: जी जी बिल्कुल
1: वो भी ईमेलों के जरिए।
0: बिल्कुल,
1: अब अल्लाह का करम है कि अब आपसे फोन पे भी बात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे कंसिस्टेंट लिसनर्स हमें कॉल्स करते हैं और हम उनसे जुड़ते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो साहिल, कौन सी गजल सुनेंगे आप आज?
1: शुक्रिया। पंकज उदास की गजल है, इश्क न चाहे जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार।
0: बिल्कुल ठीक है, आप तक ये गजल जरूर पहुंचाएंगे। आपके साथ कौन साथी हैं जो ये गजल सुनना चाहेंगे?
1: अगर ये गजल नहीं मिली तो अपनी पसंद पे कोई भी गजल सुनवा दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको फिर कोई भी अपनी गजल, हम अपनी पसंद पे कोई भी गजल सुनवाएंगे आपको। तो आपके साथ कोई
1: जी
0: साथी जो ये गजल सुनना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई दो मुश्ताक और इम्तियाज और एजाज अहमद हमदानी, उन्होंने आपकी पूरी टीम के लिए और आपके लिए सलाम और दुआएं भेजी है।
0: बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उन सबको सलाम और दुआएं पेश कीजिएगा। साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: शुक्रिया दीदी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैम आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: बस अल्लाह के फजल से ठीक है।
0: आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं उरनहाल आनंदनाथ से एजाज सूफी बात कर रहा हूँ।
0: एजाज, क्या करते हैं आप?
1: मेरा कार वॉशिंग स्टेशन है मैम, मैं वही काम करता हूँ।
0: की बहुत अच्छी बात है। तो एजाज, कौन सी गजल आप आज सुनना चाहेंगे?
1: गुलाम अली की एक गजल है, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारी।
0: बिल्कुल, आप तक ये गजल जरूर पहुंचाएंगे। कोई साथी जो आपके साथ ये गजल सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरा एक दोस्त है फहीमुल हक, उरनहाल बनगाम से है।
0: जी।
1: मेरा बेटा है सूफी इमाद, मेरी बेटी है सूफी टेलर बशीर अहमद खांडे और गुरी बिजबारा से फारूक अहमद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आप तक ये गजल जरूर पहुंचाएंगे। आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम।
1: अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: जी दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो आप नंबर डायल कर सकते हैं 2480364।
1: सईन, आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे हेलो महफिल गजल। अब हम आपको आकाशवाणी
2: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
3: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, पर आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को बैठक होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खामोश निगाहों से जब तुम बात करते हो तो ये फुर्सत के हर पल में बस तुम्हारी याद दिलाते हैं।

वो अपनी नशीली निगाहों से जब हमें देखते हैं, हम घबरा कर आंखें झुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी निगाहों से निगाहें, सुना है वो आंखों से ही अपना बना लेते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों, जिन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम है निशिगंधा, मैं हूं आपके साथ अंजू।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

तुमसे बिछड़कर तुमसे मिलना कुछ ये एहसास दिलाता है मुझे कि कुछ याद आता है मुझे, कि यूं ही किसी रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे, यूं ही कुछ रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे और देखकर चाय की टपरी मुझे याद आया तुम्हारी, और मैंने रुककर कहा एक कप चाय, और पीछे से आवाज आई अरे एक नहीं दो।

उठते हैं जब कदम तेरे तो ये बहारें फिर शर्मा जाती हैं। सामने जो आती है तू तो चांद की चमक भी फेंकी पड़ जाती है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news.

दोस्तों, समय हुआ 1:11 और 9 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजु। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: शायद तू क्या गा रही
1: है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

कहानी शुरू हुई थी एक छोटी सी मुलाकात से, अब बात आगे बढ़ गई है दिन रात की हर एक बात से। तुम्हारी हर एक मुस्कान पर दिल हार बैठे हैं हम अब, और कोई ख्वाहिश नहीं इस हसीन शुरुआत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, पर मुझे तो लगता है ये कोई दुआ है जो कबूल हो गई है।

मैंने उससे पूछा, क्या मुझ पर एतबार है? तो उसने कहा, तेरी हर एक बात पर बहुत एतबार है। मैंने पूछा, अच्छा इसकी वजह? तो उसने कहा, वजह बस इतनी सी है कि तुमसे बहुत प्यार है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों गीत सुहाने सुन रहे हैं आप अंजू के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुना है तुम हर चीज का हिसाब रखते हो, फिर बताओ कि मेरी मोहब्बत का क्या हिसाब दोगे।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन

0: शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्य पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes.

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आपको बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है। और तेरे बिना जीना, जीना भी कोई जीना सा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

खत अधूरे थे मगर वो चिट्ठियां अच्छी लगी। कागज उससे सही नजदीकियां अच्छी लगी। रात भी खामोश थी और चांद भी गमगीन था। आंख में डोरे लिए वो सुर्खियां अच्छी लगी। जिक्र में भी नाम उनका हम न ले पाए कभी। प्यार में इन बंदिशों की चुप्पियां अच्छी लगी।

हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में। एक तुम आए भी नहीं और मेरी जान भी ले गए।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर पंकज गोस्वामी रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभरात्रि।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त

0: बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। मैं हूं पंकज आपके साथ और आधी रात के 3:11 हो चुके हैं, तो इस शो की शुरुआत करते हैं और फिर दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। लेकिन अभी के लिए बरसात की एक रात मूवी से, इस गाने से ही इस शो को शुरू करते हैं। और लता जी और किशोर कुमार

इन फिल्मों का दौर बेशक बीत गया हो, लेकिन पुराने गानों का यह दौर कभी नहीं बीतेगा, क्योंकि इन गानों ने मानव अमृत पी लिया हो। आधी रात की इस खामोशी में मैं आपका साथ देने के लिए मैं पंकज हूं आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है हमराही, और जिसमें पूरे घंटे मैं प्ले करूंगा पुराने डुएट्स गाने आपके लिए। वैसे बड़े दिनों बाद में आपसे मिल रहा हूं, और सच में बहुत मिस किया मैंने आपको और इन गानों को, सच्ची। तो तसल्ली से इन हसीन गीतों का मजा लीजिए, और मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

देवता मूवी का ये गाना था, लता जी और किशोर कुमार की आवाज थी, आरडी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल। वैसे अगर चांद की चोरी इतनी आसान होती तो हर कोई उसे अपने पसंदीदा मर्द या महबूबा को दे देता लेकिन खैर, वैसे अपने लवी डवी के चेहरे को चांद से कंपेयर करके ना उसे खुश तो किया ही जा सकता है, इतना तो लोग करते ही है। वैसे मैं हूं पंकज, आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और हमेशा उसे ही अपना हमराही बनाइए जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। यकीन मानिए आज के टाइम में प्यार मिलना सच में बहुत मुश्किल बात है, और अगर मिल जाए तो फिर आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं।

खूबसूरत ये गाना था खयाम का, म्यूजिक के निदा फासली के बोल और ना खुदा मूवी से ये गाना था, नितिन मुकेश और लता जी की आवाज में। हमारी दिक्कत पता ये है कि किसी से भी अपने प्यार का इजहार करने में ना हम बहुत टाइम लगाते हैं, या फिर हद से ज्यादा ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा और हम कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, मतलब और भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग हम करते हैं। और कई बार तो इसी उथल पुथल में जो है दूसरा इंसान अपनी राह ही बदल लेता है और फिर आप एक कमाल का इंसान अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खो देते हैं। प्यार ही तो है, कह दो ताकि आपको चुप रहने का ये मलाल ना हो कि भाई हमने समय रहते बोला नहीं। मैं हूं पंकज, हम राही शो में सिर्फ आपके साथ, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अपने आसपास ना आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको ये गिल्ट रहा होगा कि काश हमने समय रहते अपने पसंदीदा शख्स से अपने प्यार का इजहार कर दिया होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं और अब सिचुएशन अलग है।

बुलंदी मूवी से ये गाना था मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिरिक्स थे और आरडी बर्मन का म्यूजिक था। वैसे एक ये भी है कि उसमें थोड़ी बहुत तूतू मैमे भी हो, और अगर ये नहीं है ना तो सच मानिए रिश्ता ठंडा है। बाकी मौसम तो गर्म है, इस टाइम भी आधी रात हो रही है और अभी भी गर्मी तो है ही अब क्योंकि मई की ये रात है। बाकी अगले घंटे मैं पंकज आपसे फिर मिलता हूँ दूसरे शो अरुणिमा में। तो इसी तरह गाने इंजॉय करते रहिए हमरा ही शो के, ये जो दो गाने और बचे हुए हैं, और उसके बाद अगले घंटे में आपसे मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आंखें बंद कीजिए, इस गाने में खो जाइए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, सो प्लीज ध्यान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has returned to India after successfully concluding the final leg of his five-nation tour in Italy, where both nations announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and the facilitation of mobility for Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs to curb tax crimes, money laundering, and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday, Prime Minister Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, while India is known as a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation." He added that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy, deliver for the world. During the joint statement, Mr. Modi highlighted that both countries will work together on shipping, port modernization, logistics, and the blue economy. Prime Minister Meloni said the aim is to enhance the complementarity between the two countries in many sectors. PM Modi has also been conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization in Rome. Union Home Minister Amit Shah has congratulated Prime Minister Modi for being honored with Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Shah said, "This honor is a tribute to millions of Indian farmers and all those associated with the agricultural sector." Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman have congratulated PM Modi over the conferment of FAO's

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। सुबह के 4:10 हुए हैं और अब शुरू होता है अगला कार्यक्रम अरुणिमा, और मैं हूं पंकज आपके साथ। और इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं। अभी के लिए चोर पुलिस मूवी से ये गाना सुनिए लता जी की आवाज में।

रविंद्र जैन के बोल हो और उन्हीं का ही संगीत हो और गाना अच्छा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुरेश वाडकर और हेमलता की आवाज थी। पहली फिल्म का ये गाना सुना आपने अरुणिमा शो में, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ। सुबह के 4:18 और 37 सेकंड हुए हैं और स्टूडियो से एकदम लाइव जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। तो इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस ये कहूंगा कि जिंदगी में ना कुछ कामों को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो सब्र करना जरूरी है ताकि काम अच्छा हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाना इस तरह से बना हुआ है कि चाहे तो इसे ढलते हुए दिन के समय सुनो तो भी अच्छा लगेगा, और उगते हुए सूरज के टाइम पर सुनो यानी इस टाइम तो भी अच्छा ही लगेगा। कुछ गानों की फितरत ही बहुत खूबसूरत होती है। सलील चौधरी ने इस गाने को म्यूजिक दिया था, योगेश ने लिखा, मुकेश ने गाया और आनंद फिल्म का ये गाना था। इस जिंदगी की पता है कुछ घटनाओं को हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर इतना सीरियसली हावी कर लेते हैं और कि अपने प्रेजेंट टाइम को भी हम जो है खराब कर लेते हैं। हालांकि गलत बात है, और एक बात ध्यान रखनी है हम सभी को, लाइफ की ना एक एक्सपायरी डेट फिक्स है, जाना तो पड़ेगा लेकिन कब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार तो उस टाइम से पहले ही कई लोग चले जाते हैं। तो जाना तो मतलब है ही, लेकिन साथ कुछ जाना नहीं है तो फिर इसे जो है अच्छे से जीना चाहिए, और कभी भी किसी की दूसरों की जिंदगी में जो है हमें खराब नहीं करना चाहिए, और यही इंसानियत है। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। हम दूसरों को कांटे नहीं बल्कि फूल दें।

अपने पॉजिटिव वर्ड से किसी को उत्साह से भर देना भी जो है वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही ये एक गाना था अंधा कानून मूवी का। किशोरदा की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हंसना रोना जीवन के सिक्के के देखिए दो पहलुओं की तरह है और यही हमारी जिंदगी को जो है ना बैलेंस भी रखता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि ये दोनों इमोशंस जो है हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसका ध्यान तो देखिए हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम इतना एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर अपने माइंड के ऊपर ले लेते हैं कि फिर उसके बाद जो है शरीर में धीरे धीरे रोग पैदा होने लगते हैं, कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी कुछ चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा साइड करना चाहिए, ताकि आप जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट पल हैं उनको ऐसे वेस्ट ना कर पाएं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ और शो का नाम है अरुणिमा। अब बाकी तो खैर और कुछ अनलिमिटेड तो नहीं लेने चाहिए दुख, लेकिन

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

खुशी के मारे पांव जमीन पे ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन गर्मियों में तो पांव जमीन पर ही रहते हैं क्योंकि जमीन इतनी गर्म होती है और ठंडक तो कहीं होती नहीं है, तो इसलिए जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। लता जी की आवाज इस टाइम सुनना यानी सोने पर सुहागा, और अब जो है थोड़ी देर में सूरज की सोने जैसी रंगत जो है वो आसमान में छा जाएगी क्योंकि सुबह के 4:54 हो चुके हैं और मई का महीना चल रहा है, जल्दी अब दिन निकल आता है। अरुणमय शो का टाइम जो है बस कुछ मिनटों में पूरा होने वाला है और मैं पंकज आपसे अगले घंटे मिलूंगा यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो ये गाना इस शो का लास्ट है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिए और अगले घंटे दूसरे शो में आप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े

0: क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभूनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमरीका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. Mr. Modi highlighted that both countries will work together on shipping, ports modernization, logistics, and the blue economy. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also said that both nations are working hard on advanced manufacturing, infrastructure, energy, space, economy, and defense. India and Italy will celebrate 2027 as the year of culture and tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Prime Minister Narendra Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome, Italy. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists, and workers. The medal was presented by FAO Director General Qiu Dongyu. Several union ministers, including Home Minister Amit Shah, Finance Minister Nirmala Sitharaman, and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, have congratulated PM Modi for being honored with the Agricola Medal. Home Minister Amit Shah noted that India has emerged as a global leader in the agricultural sector, and the country

सुबह हो चुकी है, 5:10 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।